एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी।

0: परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा केंद्र से और कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मन की चंचल वृत्तियों को पूरी तरह शांत और नियंत्रित करना ही योग है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

श्रोताओं, ऐसा कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची है तो कृष्ण जरूर मिलते हैं। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से।

0: इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 होने को हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे 12वें इंटरनेशनल योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल।
1: रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में लिए चलते हैं।
2: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
4: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी have arrived at the iconic Red Road, and the Honorable Prime Minister will be leading the nation today, and he will personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge

0: crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: हानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए. यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे. इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग. बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं. और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है. पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय

0: योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
1: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
0: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
0: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग

0: ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026 আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 12তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি।
1: That was the Honourable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honourable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honourable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuch Bihar to Kagdweep. And now we can see that the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
2: Rajpal Sri R. N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत।

स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। Friends, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70.

Then we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को

0: फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसना सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूहों को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती के हम

0: शांति की कामना करते हैं। हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं, सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं। नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
1: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
1: हम सब,
0: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड एंड ही विल बी गोइंग टू द डेजिग्नेटेड एरिया एंड ही हैज जस्ट अराइव्ड देयर एंड ही विल बी परफॉर्मिंग द आसनास फ्रॉम हियर and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road, and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: जी,
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं।
0: जी,
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
0: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से।
0: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे, वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Manish Naje, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है,

0: हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है. मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहां से शुरू होती है. और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो.
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है अध्यात्म में.
0: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना. अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं. इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना. जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है. इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं. तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना. हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर. जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है. फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है. आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं. इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है. और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं. हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है. आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है.
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है. प्रतिमा जी आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं.
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है. और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है. और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं.
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में. और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए तो योग में करियर भी है. और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं. मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं.
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं. जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है.
1: जी,
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं. वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि.
1: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना. योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है.
0: बहुत बढ़िया. एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं. जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं. जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे. तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस

0: आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी। और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
3: जी। And as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्ध चक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
1: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है।

0: और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें, और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं, और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके, और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक.
1: And we can also see Neelam, and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them, and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: Ji, bilkul. Aur ye jo aasan hai, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है. वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन है. और यहां हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित है, आमंत्रित अतिथि उपस्थित है माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए. अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है, और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए. और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है. और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है. साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी. और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य. कौशिक जी,
1: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here, and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just, as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: And now about this asana, किया जा रहा है शशक आसन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा, सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए. उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको,

0: उसके बाद उत्तान मंडूक आसन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडूक आसन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
1: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
2: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasana.
1: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
0: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है, तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
1: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
0: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
1: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द
1: आसन, उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
0: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
1: जी।
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
1: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है, तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं, और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
0: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे, ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम

0: करता है और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है। ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
1: जी गुरु मुनीश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर
1: जी।
2: बहुत ही
1: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
0: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम,
1: जी,
0: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
1: जी।
0: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
1: जी सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
0: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
1: जी।
0: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं

0: वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है।
1: जी गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है,

0: मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
1: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है।
0: जी,
1: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त के कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
2: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
0: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोपनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपाल भाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच, जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
3: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहजासन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामीन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए

0: प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है, ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेत वायु युक्तम युक्तम च पूरयेत, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं
1: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है
0: जी। और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है, भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षणमुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है, डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
1: जी।
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी जी। भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें,
0: और बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है
1: जी।
0: तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं जी।
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड बिकमिंग वन विद द यूनिवर्स। डॉक्टर प्रतिमा,
0: मेडिटेशन इज नॉट जस्ट मेडिटेशन, इट इज मेडिकेशन ऑफ बॉडी एज वेल एज माइंड। क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
1: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें, मेरी खुद की लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना।

0: मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन थ्री मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है, और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है
1: जी। आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना,
2: शांति
1: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
2: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर,
1: जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है,
2: और धीरे धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है, और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं, और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
3: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड, एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yoga asanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: जी, जल थल नभ सभी योग में होंगे। हम जानते हैं कि भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे, और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है, और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
3: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशनड, एंड वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म आवर लिसनर्स दैट एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज मेंशनड दैट द गिफ्ट ऑफ इंडिया was just not only Lord Buddha or peace, but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinha ji, you were mentioning about the importance of

0: meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
1: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बनके 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुने 10 मिनट या 15 मिनट उस सिर्फ स्टैचू हो जाए, जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनसपटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं, मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है, फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डली लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
2: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
3: Yes, and as Guru Munesh Sinha ji mentioned, and as you also mentioned, Neelam ji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. the Indian Navy.

0: the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the River Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there. And in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं. इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कम कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं, और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी, कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है. सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा, और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से, आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ, और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूं. नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: इस वक्त आपने ट्यून किया

0: श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए समाचार प्रभात, फिर 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में

0: हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दो

0: द्वारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
3: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हार्मूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12,00,000 करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिन्दुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना

तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कहते हैं एक परवाह ही बताती है कि ख्याल कितना है, वरना कोई तराजू नहीं होता रिश्तों में।
1: बिल्कुल।
0: और नमस्कार उदयपुर प्रोग्राम लेकर आज आपके दो दोस्त हाजिर हुए हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वृंदा और मेरे साथ है
1: नेहा। तो साथियों स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा।
0: नमस्कार। तो नेहा, आज हम प्रोग्राम लेकर आए हैं और बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। आपको तो पता ही है आज विश्व योग दिवस है, तो उसके ऊपर एक विशेष बातचीत हम लेकर आए हैं, साथ में जो वीकली अपडेट्स देंगे उसके बाद और क्या देंगे।
1: बिल्कुल, आज फादर्स डे है तो हम उस विषय पे भी बात करेंगे, और आज है विश्व संगीत दिवस तो उस विषय पे भी हम बात करेंगे। साथ ही महिला T20 विश्व कप अपडेट के बारे में हम हमारे श्रोताओं को जानकारी देंगे, और साथ ही अपडेट देंगे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। और मनोरंजन तो होगा ही वृंदा, तो उसी से शुरुआत करते हैं। बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक

0: एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, और ये प्यार ही तो है जो परिवार को जोड़े रखता है, और साथ में जो प्यार बढ़ता चला जाता है तो समाज और देश भी जुड़ा रहता है। और अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज बहुत खास दिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे 2 दिवस की, मतलब फादर्स डे और विश्व संगीत दिवस की। पिता हमारे जीवन की वह मजबूत नींव है होते हैं जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। उनका प्यार, त्याग और मार्गदर्शन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल वृंदा, फादर्स डे हमें अपने पिता और पिता समान व्यक्तियों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। और साथ ही अगर बात करें विश्व संगीत दिवस की, तो वहीं संगीत जो है हमारे जीवन में खुशियाँ, सुकून और नई ऊर्जा भरता है। संगीत एक ऐसी भाषा है जो बिना शब्दों के भी हमारे दिलों को जोड़े रखता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, चाहे खुशी का मौका हो या मन को शांति देने का समय, संगीत हर पल का साथी बन जाता है। आइए आज हम अपने पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और संगीत की मधुर धुनों के साथ जीवन को और भी खूबसूरत बनाएं। पिता का साया और संगीत की माया दोनों ही जीवन को खुशियों से भर जाते हैं।

बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: नेहा, यूं तो आज फादर्स डे है, लेकिन फादर्स डे के लिए कोई मुकम्मल दिन नहीं होता। हर दिन ही फादर्स डे है, लेकिन आज जो दिन है उसको स्पेशल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने पापा को, अपने पिता को ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छे पापा हो, थैंक यू मेरे पापा बनने के लिए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है वृंदा। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। आज हम संडे स्पॉटलाइट के इस नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में लेकर आए हैं वीकली अपडेट। तो बात करते हैं पुरुषोत्तम मास के अंतिम चरण में शहर के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में विशेष मनोरथों और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दीपोत्सव के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहे, साथ ही भव्य छप्पन भोग मनोरथ का आयोजन हुआ। इसी के साथ कथाओं की पूर्णाहुति हुई और शोभा यात्रा निकाली गई।
0: बिल्कुल सही कहा नेहा आपने, जो पिछला हफ्ता था उसमें बहुत सारे आयोजन हुए और एक विशेष आयोजन और हुआ। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती को लेकर मेवाड़ में उत्सव का माहौल रहा। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें शामिल है रक्तदान शिविर, शोभा यात्रा निकाली गई, महाराणा प्रताप

0: की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। वहीं विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ, जिसमें 486 किलो लड्डू का भोग धराया गया और 486 दीप प्रज्वलित किए गए। एक शाम महाराणा प्रताप के नाम भजन संध्या आयोजित हुई।
1: बिल्कुल सही। और साथ ही हम बात करते हैं कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सुबह पवित्र जल में स्नान कर दान पुण्य कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की और शाम को घनघोर घाट पर पिछोला झील में दीपदान भी किया।
0: और एक बहुत अच्छी खबर उदयपुर वासियों के लिए, शहर की उभरती तैराक विधि सनाडे का चयन सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम में हुआ है। वह अहमदाबाद में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी।
1: बिल्कुल। और आज हम जानकारी देते हमारे श्रोताओं को कि नीट की परीक्षा आज आयोजित होने जा रही है। उदयपुर में भी 29 परीक्षा केंद्रों पर 8738 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे।
0: जो छात्र इस परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं यानी कि ये परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए कुछ विशेष बातें हैं। विशेष बात यह है कि रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 11 बजे से 1:30 तक।
1: बिल्कुल।
0: 1:30 के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि समय से निकले और परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इसके अलावा भी कुछ नियम है जिसका पालन करना आवश्यक है। उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी बच्चे हैं जो नीट की परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं, वो लोग जाएं तैयारी के साथ। और हम तो बस यही कहेंगे कि बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही हैं सिकंदर।

0: तो वृंदा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे श्रोताओं को जानकारी देते हैं महिला T20 विश्व कप अपडेट के बारे में। तो कल हुए मैचेस में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गवाए और 219 रन बनाए। बेथ मुनी ने शानदार 74 रन बनाए। एशले गार्डनर ने 58 रन की तेज पारी खेली। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 121 रन पर ही सिमट गई। बेबेट डिलीडे ने नाबाद 56 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की ओर से किम गर्थ ने 2 विकेट लिए। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही बेथ मुनी और ऑस्ट्रेलिया 98 रन के साथ विजयी रही।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब बात करते हैं बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान मैच की। तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 123 रन बनाए। शोना अख्तर ने नाबाद 39 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 100 रन बना सकी। मुनीबा अली ने 25 रन बनाए। बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर ने 3 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच रही शोना अख्तर और बांग्लादेश 23 रन से विजय रही।
0: बिल्कुल। और अगर तीसरे मैच की बात करें हम तो इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 200 रन बनाए। सोफिया डंकली ने 57 रन बनाए। फ्रिया कैंप ने 39 और डेनी गिब्सन ने 30 रन जोड़े। स्कॉटलैंड की टीम जवाब में 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 162 रन पर ही सिमट गई। सारा ब्राइस और पीपा स्प्रोल ने संघर्ष किया लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकी। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लिस्टोन, लिंसी स्मिथ और डेनियल गिब्सन ने महत्वपूर्ण विकेट लिए और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही सोफिया डंकली और इंग्लैंड 38 रन से विजय रही।
1: आज शाम की अगर बात करें तो आज शाम 7 बजे भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका मैच रहेगा। भारत ने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है और जीत की लय बरकरार रखना चाहेगा। कप्तान हरमनप्रीत अपने 200वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के करीब हैं, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह मुकाबला सेमीफाइनल की दौड़ में बेहद अहम माना जा रहा है।
0: बिल्कुल। और आज के दूसरे मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका, ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे खेला जाएगा ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड में और दोनों टीमों के लिए मैच अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर होगा। वेस्टइंडीज की विस्फोटक बल्लेबाजी और श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी मुकाबले को रोमांचक बना सकती है। और आगे बढ़ते हैं और हमारे श्रोताओं को जानकारी देते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में।
1: बिल्कुल।
0: तो तुर्की बनाम पराग्वे, ग्रुप डी के मुकाबले में पराग्वे ने तुर्की को 1-0 से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। मैच का एकमात्र गोल पराग्वे की ओर से किया गया जिसमें टीम को पूरे 3 अंक दिलाए। तुर्की ने वापसी की कोशिश की लेकिन पराग्वे की मजबूत रक्षा पंक्ति के सामने सफल नहीं हो सकी। इस मैच में स्टार खिलाड़ी रहे मिगुअल अल्मिरोन।
1: अब बात करते हैं नीदरलैंड वर्सेस स्वीडन मैच की। ग्रुप एफ में नीदरलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। नीदरलैंड्स के खिलाड़ी ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और लगातार

0: गोल कर मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा।
1: बिल्कुल, और इस मैच में स्टार खिलाड़ी रहे कोडी गोफ को। और अगर हम बात करें तीसरे मैच की, जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट, ग्रुप ई के रोमांचक मुकाबले में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया। जर्मनी ने शुरुआती बढ़त बनाई और अंत तक उसे बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण जीत हासिल की। आइवरी कोस्ट ने संघर्ष जरूर किया लेकिन बराबरी का गोल नहीं कर सका। और ये थी जानकारी T20 विश्व कप अपडेट और फीफा वर्ल्ड कप अपडेट के बारे में।

0: वृंदा, अगर हम भी हमारी जिंदगी से प्यार करते हैं तो तन की शक्ति, मन की शांति और आत्मा का सम्मान है। योग केवल आसन अनुशासन ही नहीं, हमारे पुरखों का ज्ञान है। योग सिखाता संतुलन हमको, सुख दुख दोनों में मुस्कुराना, भागती दुनिया के बीच ठहर कर खुद को फिर परिचय पाना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके इस विषय पर और जानकारी देंगे हम 9:10 पर। फिलहाल समय हो चला है सुबह के 9 बज रहे हैं। हमारे जयपुर केंद्र से सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तो समाचारों की

0: प्रतीक्षा कीजिए। 9:10 पर जब हम हाजिर होंगे तब हम सुनवाएंगे सबसे पहले बातचीत और करेंगे कुछ और चर्चा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश दौरे पर विभिन्न रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात देंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट। और देश में बने नौसेना के 3 जहाज आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का आज अनावरण होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करते हुए कहा कि योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इस बार 200 से अधिक भारतीय दूतावासों पर योग सत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबू राज में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समारोह में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योग अब एक विश्वव्यापी जन आंदोलन बन गया है। योग न सिर्फ शरीर और मन को जोड़ता है बल्कि विश्व को जोड़ने का काम भी कर रहा है। उन्होंने सभी से स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित योग अपनाने का आह्वान किया।
3: योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है, वैसे ही योग आज विश्व को भी जोड़ रहा है। योग के शारीरिक और मानसिक लाभ भी अनगिनत है। ये शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, तनाव, चिंता और क्रोध को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को मजबूत करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आधुनिक विज्ञान भी आज योग की महत्ता को स्वीकार कर रहा है।
1: इधर बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योग शिविर में योगाभ्यास किया। इस दौरान केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। योग प्रोटोकॉल सत्र में भाग लेने से पहले मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीवन में योग को अपनाने से न केवल बीमारियों से बचाव संभव है बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन पद्धति भी है।
4: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया, वैसा ही योग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर पहुंचाया है।
1: आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी जयपुर के जंतर मंतर पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। साथ ही एसएमएस स्टेडियम, अल्बर्ट हॉल, जलमहल सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी

0: रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री दोपहर में जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। श्री वैष्णव 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्रा सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विकसित की गई यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा आज दोबारा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से कल मॉक ड्रिल की गई। परीक्षा को सुचारू, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए यह अभ्यास किया गया। एनटीए के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है। ये रोक 22 जून तक प्रभावी रहेगी। इधर प्रदेश में रीनीट परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। साथ ही सीआरपीएफ की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। नीट परीक्षा को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय किया है। रेल प्रशासन का उद्देश्य परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक समय पर सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। इसके तहत जोधपुर मंडल पर 3 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षक और सिटी कोऑर्डिनेटर तैयार किए गए हैं। कोचिंग सिटी कोटा की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने नीट परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे बिना किसी तनाव के परीक्षा दें। पुलिस ये परीक्षा सुरक्षित और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि किसी भी तरीके की भ्रामक पोस्ट पर, किसी भी तरीके के लालच पर, किसी भी तरीके के ऐसे दावे पर कि उनके पास कोई नीट का पेपर है, आप विश्वास ना करें। और अगर ऐसी कोई सूचना आपके पास आती है तो कोटा शहर पुलिस के विभिन्न स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो नीचे दिए गए हैं कैप्शन में, उन पर जरूर हमें सूचित करें। कोटा शहर पुलिस आप सभी के लिए काम करने के लिए और एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में ये एग्जाम हो उसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप सभी को एक अच्छे एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।
0: देश में बने नौसेना के 3 जहाज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का आज अनावरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज इनका अनावरण करेंगे। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। नौसेना के अनुसार इन जहाजों के निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। देश की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर हनुमान सिंह राठौड़ को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत गठित कमेटी की सिफारिशों के आधार पर श्री राठौड़ का मनोनयन किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश के दौरे पर, विभिन्न रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात देंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट। और देश में बने नौसेना के 3 जहाज आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और

0: INS अग्रय का आज अनावरण होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, उदयपुर प्रोग्राम में एक बार फिर से सभी सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं। और नेहा, अब बात करते हैं कि आज के खास दिन की। आज है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और अगर इस बार की थीम की बात की जाए तो इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग।
2: बिल्कुल वृंदा, और योगा फॉर हेल्दी एजिंग अगर इसका अर्थ हम देखें तो स्वस्थ और ऊर्जावान वृद्धावस्था के लिए योग। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि योग केवल युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक है। योग शरीर को लचीला बनाता है, संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, तनाव कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और भी हम जानकारी सुनेंगे। योग दिवस के अवसर पर आज एक हम विशेष बातचीत सुनाने जा रहे हैं, स्वस्थ आयु के लिए योग। इस विषय पर योगाचार्य प्रीतम सिंह चुंडावत से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत सुनिए।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज है विश्व योग दिवस और इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है प्रीतम सिंह जी चुंडावत। आप योगाचार्य हैं और इनसे हम जानेंगे कि जो योग दिवस है इसको मनाने का उद्देश्य, इसके पीछे क्या थीम है और साथ ही साथ योग से जुड़ी काफ़ी सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
4: नमस्कार
3: प्रीतम सिंह जी, अगर हम बात की जाए, क्योंकि किसी भी दिवस को मनाने के पीछे कोई ना कोई थीम, कोई ना कोई उद्देश्य निहित होता है, अगर हम बात करें इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसके पीछे क्या इसमें थीम निहित है या क्या उद्देश्य है?
4: जी बिल्कुल, इस बार हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं और इस बार की जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वस्थ आयु के लिए योग।
3: अगर हम इसी बात को जारी रखें जो आपने कहा कि जो थीम है हमारी स्वस्थ आयु के लिए योग क्या है, या फिर यूं कहें कि स्वस्थ आयु के लिए योग का महत्व क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझाएं कि आम जीवन पर इस योग का साथ ही साथ जो एज के साथ जो योग का महत्व कितना बढ़ता चला जा रहा है।
4: जी बिल्कुल, इस बार की जो थीम जैसा कि मैंने बताया कि स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि आयु तो स्वस्थ रहनी चाहिए, लंबी आयु तो होनी चाहिए, लेकिन उसको कैसे स्वस्थ तरीके से उसको अपनाया जा सके, तो उसके लिए हमारे जीवन में हमें योग को अपनाना है। तो योग के माध्यम से हम जो हमारी जो आयु जो लंबी है उसको हम स्वस्थ कर सकते हैं।
3: योगाचार्य जी, अगर हम बात करें वर्तमान समय में स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर यूँ कहें खान पान में काफ़ी जागरूकता भी है ये, और साथ ही साथ एक बात ये भी है कि कई सारी नित नई बीमारियां भी फैल रही है, लेकिन जो हमारी थीम है और अगर थीम के हिसाब से हम बात करें तो योग जो है वृद्धावस्था में आने वाली कुछ समस्याएं, जैसे हम कह रहे हैं कि कुछ बीमारियां एक उम्र के बाद आती है, जैसे कई सारी बीमारियां 40 के बाद या 50 के बाद ऐसे दिखाई देती है, तो इन समस्याओं को किस तरह से कम किया जा सकता है योग के माध्यम से?
4: जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया और साधारणतः ऐसा होता ही है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो बीमारियां तो निश्चित रूप से आती आती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जोड़ों के दर्द हो गए, कमर दर्द हो गया, अनिंद्रा हो गई या हाई बीपी हो गई, इस तरह की, या मधुमेह हो गया, इस तरह की साधारण ये सभी बीमारियां बढ़ती हुई उम्र के साथ तो होती ही है। लेकिन सवाल यहाँ था कि इसको कैसे नियंत्रण किया जाए, मतलब कैसे कंट्रोल में लाया जाए, तो कंट्रोल में लाने के लिए हमें योग को अपनाना है। इसलिए इस बार की जो थीम है कि स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी कि इन सब बीमारियों को कंट्रोल में करते हुए हमें योग को अपनाना है, और यदि हम योग को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ये सब बीमारियाँ कंट्रोल में रहेगी।
3: प्रीतम सिंह जी, जब भी कभी योग की बात होती है और ख़ास तौर से क्योंकि आज का ज़माना आधुनिक है और भारत में युवाओं की आबादी ज़्यादा है, लेकिन जब भी हम योग या योग से जुड़ी या योग क्रियाएं आसन इनकी बात करते हैं तो युवाओं के बीच में एक आम मिथक ये है कि योग जो है वो एक प्रौढ़ या फिर वृद्ध लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या सिर्फ ये योग बुजुर्गों के लिए है या फिर एक योग जन्म से लेकर मृत्यु तक हर उम्र या हर वर्ग का व्यक्ति इसको अपना सकता है?
4: जी बिल्कुल, यह योग सिर्फ वृद्धावस्था के लिए नहीं है, सभी अवस्थाओं के लिए है, और खासकर युवाओं के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा बहुत ज्यादा भाग दौड़ में लगा हुआ है और करे, जितनी भाग दौड़ करनी है आराम से करे, लेकिन अपने मन को संतुलित रखे। और मन को संतुलित रखने का एक ही माध्यम है, वह है योग। यदि वो योग के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा तो निश्चित रूप से जो भी वो कार्य कर रहा है, जो भी भाग दौड़ कर रहा है, आज हम देखेंगे कि युवा भाग दौड़ तो बहुत ज्यादा कर रहा है लेकिन कहीं मानसिक रूप से संतुलन नहीं है और

0: मानसिक रूप से संतुलन नहीं होने का कारण कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम उनके जीवन में हम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा युवाओं के लिए कि वो भागदौड़ के साथ अपने योग को भी अपनाएं, जिससे उनका मानसिक संतुलन बना रहे और जो भी वो जिस फील्ड में भी कार्य कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं।
1: आपने जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बात की इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन एक प्रमुख प्रश्न इसमें यह भी है कि जब भी युवाओं के साथ जब इस तरह के अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर संवाद होता है तो उनकी संभवतः रुचि थोड़ा फिटनेस, जिम, बॉडी बिल्डिंग इसकी तरफ ज़्यादा है, या अलग अलग जो अपने फिट रखने के उपाय हैं उसमें वो ज़्यादा उनका झुकाव उस तरफ ज़्यादा दिखाई देता है।
0: जी।
1: आप अगर साधारण शब्दों में समझाना चाहें कि जो हमारा शारीरिक वर्कआउट, जिम, फिटनेस या फिर वो एप्स बनाने वाली जो शैली है और एक योग, उससे किस तरह से भिन्न है, या फिर यूं कहा जाए कि क्या योग उनसे किस तरह से बेहतर है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
0: जी बिल्कुल, आपने बहुत ही शानदार चीज यहाँ पे जिक्र किया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ इतने सी एक लाइन में मैं इसको समेटना चाहूंगा कि हमें जानकारी की कमी होने के कारण हमें ऐसा लग रहा है, अन्यथा ऐसा नहीं है। जब आप योग के अंदर आएंगे और आप देखेंगे तो इसमें भी वो की वही चीजें, और आप देखेंगे कि जिम और जो दूसरी जो चीजें हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि वहाँ ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है या ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ योग के अंदर भी आसन और इतनी सारी क्रियाएं हैं कि आपको बहुत आनंद आएगा। बस जरूरत इसका है कि उसको अपनाने का। हम क्या करते हैं कि साधारणतः उस चीज को अपनाते नहीं है और सिर्फ भ्रांतियों में पड़े रहते हैं कि योग का मतलब यह हो गया कि ध्यान करना है या फिर ऐसे योग निंद्रा हो गया या इन चीजों में पड़े रहते हैं। कई बार जैसे हमारे भी जो बहुत सारे मिलने वाले हैं तो वो कभी योग का जिक्र होता है तो वो इसी बात का जिक्र करते हैं कि जैसे कोई साधना करना है या कोई करना है, वो ऐसा नहीं है। योग में सब कुछ चीजें हैं, सिर्फ देर है कि आप कब उसमें जुड़ रहे हैं। जैसे आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो वह पूरा मतलब एक दैनिक दिनचर्या है कि जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उस तरह की क्रियाएं हैं। तो जब आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो 100% आपको बहुत लाभ भी मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा।
1: प्रीतम सिंह जी, जब भी हम जो आपने योग के बारे में जो एक स्पष्टीकरण दिया है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक साथ में ये है कि अधिकतर युवा शारीरिक सौष्ठव की बात करते हैं और अपने शरीर को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। महिलाएं भी आजकल अपने शरीर को फिट एंड फाइन और शेप में देखना चाहती हैं, तो क्या योग से भी ये सब चीज़ संभव है? लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर योग एक सिर्फ एक्सरसाइज के रूप में ना माने, क्योंकि योग एक एकाग्रचिता, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और मन की शांति या मेडिटेशन के लिए भी उपयोगी है, इसको आप किस तरह से वर्णित करेंगे?
0: जी बिल्कुल, योग का साधारण अर्थ यह होता है कि जुड़ना, और जुड़ना यानी कि किसी न किसी चीज से आप यदि बिना जुड़े यदि कोई कार्य करेंगे तो वो उतना आपको लाभकारी नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे भी वो सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं कि सूर्य नमस्कार है, तो सूर्य नमस्कार हो गया या चंद्र नमस्कार हो गया या ऐसी बहुत सारी जैसे सूक्ष्म क्रियाएं होगी, तो वो यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं उन सब का आपको लाभ आराम से मिल सकता है।
1: अभी हमने कार्यक्रम में जब युवाओं का जिक्र किया तब आपने कहा कि युवा भागदौड़ कर रहा है, वो तनाव की जिंदगी जी रहा है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक रूप से स्वस्थ होना। तो मानसिक स्वास्थ्य में योग की कितनी भूमिका है उसके बारे में आप बताएं।
0: जी बिल्कुल, योग के अंदर जैसा कि अष्टांग योग में यम नियम के बाद आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि इस तरह से चलता है। तो जो ध्यान, धारणा, समाधि जो है प्राणायाम के बाद वो यदि हम करें, जैसे मैं एक प्राणायाम का नाम बताऊं आपको, भ्रामरी प्राणायाम हो गया या उद्गीत प्राणायाम हो गया, इस तरह के जो प्राणायाम है वो मानसिक रूप में बहुत अच्छे लाभकारी है और इसको आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भागदौड़ के जीवन में यदि सुबह आपको समय नहीं मिला शाम को नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओम का उच्चारण हो गया, भ्रामरी हो गया, ये जब भी आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं और आप रिजल्ट तुरंत रिजल्ट देखेंगे, विद इन अ सेकंड में इसका आपको रिजल्ट मिलेगा।
1: अगर प्रीतम सिंह जी हम बात की जाए योग और आधुनिक जीवन शैली के बीच के हम अंतर संबंध को समझने की कोशिश करें तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, वापिस वही क्वेश्चन आ गया लगभग कि आधुनिक जीवन में भागदौड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है, खान पीन भी बदल चुका है, तो इस शैली में कैसे हम शरीर को शुद्धिकरण कर सकें? यानी कि मैं आपको एक साधारण वर्ड में बताऊंगा कि जैसे गाड़ी होती है तो उसका हम मतलब फिक्स एक किलोमीटर होता है, ये फिक्स एक टाइम होता है कि उसके बाद अपने को सर्विसिंग करना है। तो योग भी मतलब पूरे बॉडी का आपको क्लीननेस करता है, यानी कि सर्विसिंग करते हैं। तो जब आप निरंतर रूप से योगाभ्यास अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि जितना आप खराब चीजें खा रहे हैं या प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं लेकिन आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम सर्विसिंग होती रहेगी। तो इसके माध्यम से जैसे योग में एक चक्रम होता है, छह क्रियाएं होती, उन छह क्रियाओं के माध्यम से हम शरीर को पूरा शुद्ध करते हैं। तो उसको भी यदि अपनाएंगे तो मतलब एक साधारण आदमी को भी यह पता है कि गाड़ी होती है उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है, तो शरीर भी हमारी एक तरह से गाड़ी है, पूरा एक मशीन ही है। तो इसका टाइम टू टाइम यदि आप सर्विस करेंगे तो निश्चित रूप से लंबी उम्र भी होगी और स्वस्थ होगी, और जो कि इस बार का 12वें अंतर

0: राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भी यही है।
1: प्रीतम सिंह जी, हालांकि जो विश्व योग दिवस है, अभी आपने जिक्र भी किया कि हम 12वां विश्व योग दिवस मना रहे हैं, लेकिन योग तो एक पुरातन संस्कृति और हिंदू सभ्यता का एक बहुत कई हजारों सालों से चली हुई आ रही एक पद्धति है जिसको पूरा विश्व आज अपना रहा है, लेकिन फिर भी समय के साथ योग दिवस मनाया जाने लगा, इसका विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाने लगा, लेकिन जो आयुष विभाग है भारत सरकार के अंतर्गत, क्या वो इस योग दिवस को और भी एक नई उपलब्धि हासिल करें, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं विभाग द्वारा? और साथ ही साथ जब आप क्षेत्रीय स्तर पर देखते हैं इन आयुष विभाग के कार्यों को, तो इसमें योग को कितना बढ़ावा मिला है?
0: जी बिल्कुल, आयुष विभाग में जो हेल्थ वेलनेस सेंटर जो बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, उसमें पिछले 3 साल से मैं स्वयं कार्यरत हूँ योग शिक्षक के रूप में, तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी बहुत सारा काम किया है और सरकार भी योग को लेके पूर्ण रूप से एकदम पॉजिटिव है और गाँव गाँव ढाणी ढाणी इवन मतलब ऐसी जगहों पर हमने जाके प्रचार कर रहे हैं और उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है और लोग धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं और अपना पा रहे हैं, यानी कि सरकार की तरफ से जो आयुष विभाग की तरफ से बहुत अच्छा इस पे कायदे हो रहा है और हम लोग हर एक दिन मतलब कुछ न कुछ नई चीजें और वहां तक योग पहुंचाना है जहां तक वास्तव में इसकी जरूरत है, तो बहुत अच्छा कायदे कर रहे हैं।
1: अगर हम आम तौर पे एक सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें, एक स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए कौन कौन से योग और अभ्यास हमारे लिए उपयोगी है और उसके बारे में आप थोड़ा सा जिक्र करें तो बेहतर होगा।
0: जी बिल्कुल, इसमें जैसे कुछ तो अपन आसन ले सकते हैं साधारण जो अपने प्रोटोकॉल में भी है, तो जैसे ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, इस त्रिकोण आसन हो गया, इस तरह के जैसे आसन हो गए, या बैठ के जो आसन है जैसे भद्रासन हो गया, वक्रासन हो गया जो कि मधुमेह के लिए भी लाभकारी है, और प्राणायाम की यदि हम बात करें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, जैसे गर्मी है तो शीतली प्राणायाम हो गया, इस तरह के यदि हम जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से अपने को लाभ मिलेगा।
1: प्रीतम सिंह जी, जब भी हम योग और योग से जुड़ी किसी भी विषय पर जब हम बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या कह दें या फिर एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में ये चीज़ सामने आती है कि वर्तमान जमाना आधुनिक जमाना है और कई लोग कई बीमारियों का कह दो या फिर समाधान घर बैठे हुए ही चाहते हैं, साथ ही साथ योग या योग क्रियाएं भी वो ये सोचते हैं कि किसी ऑनलाइन ट्यूटोरियल या फिर किन्हीं फोटो इमेजेस या पोस्चर को देख के हम योग क्रियाएं घर पर ही कर लेंगे, लेकिन इसमें जो पोस्चर किस कितने डिग्री में आपका झुकाव होना चाहिए, किस तरह से शरीर में बेंड लाना है, इनसे लेकर और श्वास को अंदर खींचने और श्वास को छोड़ने तक के काफी सारे नियम हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये योग जैसी क्रियाएं ऑनलाइन भी संभव है?
0: हाँ बिल्कुल, काफ़ी अच्छा आपने पूछा, ऑनलाइन भी संभव है इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से यही सोचना है या मेरा यह अनुभव यह कहता है कि एक बार आपको किसी न किसी मतलब टीचर के साथ में मिलके उसके मतलब जो ऑफलाइन जिसको हम बोलते हैं तो वो एक बार आपको जीवन में जरूर अपनाना चाहिए, महीना दो महीना वो करने के बाद फिर यदि ऐसी कोई संभावना हो कि आप नहीं निरंतर कर पा रहे हैं तो उसके बाद आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में तो मैं यही सभी को सजेशन करना चाहूँगा कि दौर में आप ऑनलाइन नहीं अपनाएं, शुरुआती दौर में व्यक्तिगत रूप से आप अच्छे से सीखें, क्योंकि इसमें भी यही चीजें कि यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं कहीं कोई चीज गलत कर रहे हैं तो जितने हम लाभ की जो बात कर रहे हैं उतने ही उतने साथ में नुकसान भी हैं, तो यदि हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे सही नहीं कर पाएंगे तो उसका कहीं कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा, तो शुरुआती दौर में व्यक्तिगत रूप से यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ज्यादा लाभ मिलेगा।
1: आज विश्व योग दिवस पे अगर हम ये सोचें कि कार्यक्रम से अगर किसी को प्रेरणा मिले और योग की शुरुआत करना चाहे या जो कोई व्यक्ति योग को अपने जीवन में अपनाना चाहता है, तो क्या योग के बारे में आप बताएं कि क्या योग किसी भी समय किया जाने वाली एक योगिक क्रिया है या फिर इसके संबंध में भी कुछ परहेज है या फिर कोई बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति है तो उन्हें किसी विशेष स्थिति परिस्थिति में भी परहेज रखना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, योग ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जो नियम है कुछ जो आसन है या कुछ प्राणायाम है उनके लिए एक पर्टिकुलर नियम है, अन्यथा आप दिन भर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सा बात बताऊं कि जैसे सूक्ष्म क्रियाएं, तो सूक्ष्म क्रियाएं आप दिन भर में जब आपको समय मिल जाए तब कर सकते हैं, और साधारण अगर अपन नियम देखें तो खाना खाने की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे हम कहीं कहीं योग से समय को लेकर खाने को जोड़ते हैं कि कब खाना खा रखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अगर आप भूखे हैं खाना नहीं खा रखा है तो आप कभी भी योग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने भोजन कर लिया है तो भोजन करने के बाद 4 घंटे बाद आप आराम से कोई भी प्राणायाम है कोई भी आसन है वो कर सकते हैं, और यदि आपने भोजन करना है तो 1 घंटे पहले आप कर लीजिए, तो 1 घंटे से पहले आप कभी भी कर सकते हैं, तो इस तरह का शेड्यूल। और पानी का भी इसमें अपने को विशेष ध्यान रखना है कि जब आप योगाभ्यास के लिए जाएं तो बहुत ज़्यादा पानी का सेवन नहीं करें जिससे कि आपको बार बार दिक्कत हो, तो इस तरह के जो कुछ जो साधारण जो नियम है उनको यदि आप अपनाएंगे तो उसके बाद तो आप जैसे आपको पर्टिकुलर जैसे आपको सहूलियत हो उस हिसाब से आप आराम से कर सकते हैं योगा।
1: जाते जाते कार्यक्रम में जितने भी हमारे श्रोता और खासतौर युवा जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें आप इस योग दिवस पर

0: क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वो योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए और स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सके।
1: जी बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, यानी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते मनाते पूरे 11 साल हो चुके हैं। यदि अब भी हमने हमारे जीवन में योग को नहीं उतारा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक विडंबना है कि अभी भी हम योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं। आज इतने सालों से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो चीज़ हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रमाणिक है कि इसका लाभ तो 100% है। तो सभी युवाओं से और सभी अवस्थाओं के लोगों से मैं तो एक ही आह्वान करूंगा कि आप अपने जीवन में योग को अपनाएं और आप देखेंगे इसका रिजल्ट मिलेगा। और 100% यदि आप अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप एकदम जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। आप विद इन, ज्यादा नहीं, आप, मैं कहता हूं कि सिर्फ एक महीना आप करके देखिए, एक महीने के बाद आप देखेंगे कि इसका कितना रिजल्ट होता है। तो युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आप अपने जीवन में योग को अपनाएं, अधिक से अधिक योगाभ्यास करें, जिससे कि आपको स्वस्थ और लंबी आयु के लिए बहुत अच्छे से आप इसको व्यतीत कर सकें।
0: तो आप थे योगाचार्य प्रीतम सिंह जी चुंडावत और आज विश्व योग दिवस पर योग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद सर।
2: योग दिवस के अवसर पर अभी आपने सुनी स्वस्थ आयु के लिए योग, इस विषय पर योगाचार्य प्रीतम सिंह चुंडावत से गजेंद्र सिंह राठौर की विशेष बातचीत।

0: नेहा, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और मेवाड़ भी इससे अछूता नहीं रहा। मेवाड़ की धरती संतों, ऋषियों और तपस्वियों की साधना भूमि रही है। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों, मंदिरों और आश्रमों में सदियों से योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना की परंपरा चली आ रही है।
1: बिल्कुल वृंदा, मेवाड़ में योग का संबंध केवल आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये जीवन शैली का हिस्सा भी रहा है। शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की भारतीय परंपरा यहाँ के लोक जीवन और धार्मिक संस्कृति में स्पष्ट दिखाई देती है। आधुनिक समय में भी उदयपुर, राजसमंद, नाथद्वारा और मेवाड़ के अन्य क्षेत्रों में योग शिविर, ध्यान केंद्र और योग दिवस के आयोजन इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: हम तो यही कहेंगे कि योग कीजिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। और अब नमस्कार उदयपुर से विदा लेने का समय हो चला है, तो नेहा लेते हैं अपने श्रोताओं से विदा। आज इस प्रोग्राम में मैं थी आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त वृंदा, और मेरे साथ
1: नेहा। तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।

0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत सोनू निगम की आवाज में।
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सुगम संगीत का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं सोनू निगम।

सुगम संगीत प्रोग्राम में अभी आपने सोनू निगम के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे सुने। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं पुरानी फिल्मों से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में खट्टा मीठा, इस फिल्म का नगमा।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: हाँ, जरा हंस के, जरा और खिलखिला के।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म हीरा पन्ना में। लीजिए अब सुनते हैं एक और दो गाना, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म है प्रेम दीवाने।

0: का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
6: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
5: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
6: तो फिर सही नंबर,
5: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
6: आपने तो बचा लिया दीदी।
5: काम से नहीं।
4: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
8: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: Stella, बहुत ज़्यादा है तुझे दुनिया का लीना. Now I'm happy. तुझे भी कोई ठीक करने वाला मिल गया.
1: अरे जा जा, मुझे और वो ठीक करेगा? अगर मैं चाहूँ तो एक मिनट के अंदर से शुन्ना के बाहर फेंकवा सकती हूँ. लेकिन पुष्पा, एक बात समझ में नहीं आई, वो अचानक कैसे बदल गया? क्या मुझे धोखा तो नहीं देना चाहता?
2: धोखा?
1: तो क्या उसने किसी से कह दिया वो तेरा फर्जी पति है?
2: नहीं तो
3: फिर तेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं की रात को?
1: वो तो रात को बालकनी में सोता है बाहर.
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है. अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं.
5: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है.
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित.

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने फिल्म लावा में सुना, फिर तेरी कहानी याद आई। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का गाना सुनिए। इस गाने को गाया है कुमार सानू ने।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान

0: योगदान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज में फिल्म लम्हे का ये गाना। इस गाने के साथ ही पुरानी फिल्मों से ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है।

गोरी आपने इंडोनी खोई गई है, वरने वात ने आपा अणि गीत में होनियो कि गोरी री इंडोनी खोई गई और वह कई कई होच रही है। अबे देखो सा वात वेगा, ईतल पीतल रो मारो बेवड़ो, वंडो बेवड़ा री कई वात कह रही है होना अणि गीत में।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: देखो साहब, आर गर्मी घनी पड़ रही है, अब आर तो पानी पीतो रहना है आपने बराबर। अने गर्मी थोड़ी राहत मिल सके अने वास्ते आपा सब जना सुन रहे हैं पानी संबंधित गीत। गोकड़ा आप होनी रहा माने FM मीडियम चैनल माथे।

गोकड़ा कार्यक्रम आप होनी रहा माने मीडियम वेव चैनल मध्य आप सगला जना हुनो गोकड़ा में यो आखिरी राजस्थानी गीत और विजयलक्ष्मी बाईसा ने दो अनुमति राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम गोखड़ा। ये आकाशवाणी उदयपुर है। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गीत गज़ल का कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज सुनते हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की गाई चंद गज़लें। सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
8: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से, और इसमें आज आप सुन रहे हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की गाई चंद गजलें।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी उदयपुर है। दिन के 12 बजे हैं। हमारे नन्हे मुन्ने साथियों के लिए प्रस्तुत है उनका साप्ताहिक कार्यक्रम बगिया के फूल।

0: हिंद बच्चों। और ममता कैसे हो?
1: बहुत बढ़िया
0: भाई। हाँ बढ़िया होना भी चाहिए क्योंकि भाई छुट्टियां चल रही है, हमारे बच्चे भी बढ़िया तो उनकी दीदियां भी बढ़िया।
1: दीदियां भी बढ़िया और बच्चों का तो बहुत मजा आ रहा है सरिता।
0: बिल्कुल।
1: और आना भी चाहिए, छुट्टियां होती इसीलिए है, आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए और थकावट को दूर भगाने के लिए।
0: बिल्कुल। और इन छुट्टियों में बच्चों ने बहुत सारी हॉबी क्लासेस भी ज्वाइन की होगी, वो घूमने फिरने भी गए होंगे। लेकिन लेकिन अगले वीक से वापस से स्कूल खुलने वाले हैं तो उन्हें वापस से अपनी रूटीन में लौटना भी होगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछूं ममता तुमसे?
1: हाँ पूछो ना।
0: मैं पूछती, सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या जरूरी होता है?
1: हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारा स्वास्थ्य है।
0: बिल्कुल सही।
1: अगर हम सही रहे, हम खुश

0: रहे और हम स्वस्थ रहे तो हम सब चीज का आनंद ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सही जवाब। अगर हमारे कहीं भी, अरे मेरे यहाँ दुख रहा, यहाँ दुख रहा, तो हम किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है स्वस्थ रहने के लिए?
0: स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है योग करना, और
1: बिल्कुल,
0: योग भगाए रोग।
1: कहा भी जाता है ना कि भाई योग करने से हम तरोताजा रहते हैं, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें अपनी रूटीन में योग को शामिल करना चाहिए। और हम योग की बातें क्यों कर रहे हैं?
0: क्योंकि आज है विश्व योग दिवस।
1: बिल्कुल बच्चों, 2015 से जो भी ये स्टार्ट हुआ था योग दिवस, तब से हम इसे 21 जून को मना रहे हैं। और साथ ही योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। और हम देखते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो भी योग को कितने ही ज्यादा बढ़ावा देते हैं।
0: और सरिता, बचपन से ही योग करने से बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास जो है वो बेहतर होता है, और यह उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, एकाग्रता में सुधार करता है, और पढ़ाई के तनाव को कम करने और उन्हें अनुशासित और शांत रहने में भी मदद करता है।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई बच्चों आपके लिए। और 21 जून को क्या होता है कि ये सबसे लंबा दिन होता है, ये हमारा सबसे लंबा दिन है। इस दिन ग्रीष्मकालीन अस्थिरता इसको कहा जाता है। और 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्राचीन भारतीय कला के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। और ये कला जो है, ये अभ्यास करने से, मतलब कोई भी चीज हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसमें बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो योग और प्राणायाम को बच्चों अपनी जिंदगी में जरूर शामिल रखें और इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें, तो आप इसमें परफेक्ट बन जाएंगे।
0: बिल्कुल, और योग करने से हमारा जो शरीर होता है सरिता, वो मजबूत बनता है और लचीला बनता है, और जो हमारी हड्डियां और मांसपेशियां हैं उनका सही विकास होता है, और इससे शरीर का संतुलन और लचीलापन बढ़ता है। और दूसरा है कि एकाग्रता और याददाश्त में सुधार होता है। जो हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो हमारे मस्तिष्क को शांत रखता है, और जिससे हमारा जो पढ़ाई में मन है वो मन भी लगता है, और ध्यान जो है वो पढ़ाई में टिकता है।
1: वो सबसे ज्यादा जरूरी कंसंट्रेशन ही होता है। तो बच्चों योग करने से हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं होता, हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो इस समय में आपको योग और प्राणायाम, दीदी कितनी अच्छी बातें बता रही है कि योग और प्राणायाम करने से हम किस तरह अपनी याददाश्त को, अपनी कंसंट्रेशन पावर को हम बढ़ा सकते हैं। और ममता, आजकल देखा गया है ना कि कितनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, बच्चों को छोटी छोटी बात पे तनाव हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: टेंशन ले लेते हैं, अरे मेरे तो एक नंबर भी कम आ जाता
0: और
1: है,
0: और कॉम्पिटिशन भी बहुत टफ है, तो बच्चों को स्वाभाविक है कि उनको तनाव तो बढ़ेगा।
1: इसीलिए इस तनाव से दूर रहने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो है, सुबह उठते ही फ्रेश फ्रेश होकर अच्छे से अपने आसन बिछा के योग और प्राणायाम को अपनी जिंदगी में जरूर, अपनी रूटीन में शामिल करना
0: में
1: चाहिए
0: शामिल
1: भाई।
0: और ज्यादा देर नहीं करें अगर बच्चे, तो 10 से 20 मिनट भी बहुत है।
1: बिल्कुल,
0: अगर 10 से 20 मिनट भी आप ओम का उच्चारण करते हैं और प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, तो ये आपके लिए बच्चों बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमेशा
0: स्मार्ट भी बने और स्वस्थ भी रहे।
1: बिल्कुल भाई, इतनी अच्छी अच्छी हम बातें हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो अब उनको सुनवा दे एक प्यारा सा गीत।
0: हाँ हाँ,
2: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।

0: भाई गीत तो बहुत
1: बहुत
0: ही
1: अच्छा।
0: सुनवाया है भाई, हम बच्चे भी नाचने लग गए इस गीत के साथ। और अब क्या सुनवाए उनको?
1: अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे हमारे सेगमेंट का, और कहानी तो हम सुनवाएंगे बच्चों। पर उससे पहले आज है विश्व पिता दिवस, तो विश्व पिता दिवस के बारे में बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जो पिता होता है वो हमारे घर का योद्धा होता है और मित्र होता है, हमारा रक्षक होता है, मार्गदर्शक होता है, हमारा आदर्श होता है, और हमेशा हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ में खड़ा रहता है। तो हमें जीवन का सही अर्थ सिखाने के लिए, गिरने पर सहारा देने के लिए और फिर से लड़ने का साहस देने के लिए हर साल हम पिता दिवस मनाते हैं, और पिता की जो हमारे ऊपर एहसान है उनको हम याद करते हैं।
0: बिल्कुल, देखो ममता दीदी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। हम हमारा कोई भी दिवस पिता या माता के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माता हमें अच्छे संस्कार देती है। तो पिता हमें संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं, और पिता की हर जगह, जहाँ पे कहीं भी हम संकट में होते हैं ना, तो सबसे पहले हमें पापा की सीख याद आती है कि इस समय तुम ऐसा करोगे तो इन सिचुएशन से तुम बाहर निकल जाओगे। तो पिता वो होता है जो अच्छा मार्गदर्शक कोई भी नहीं हो सकता। पिता केवल एक पिता ही नहीं बल्कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, और समय समय पर हमें अच्छी और बुरी बातों को समझाकर अपने बच्चों को आगाह कर देते हैं, और अब उनकी जिंदगी में एक मजबूत स्तंभ बनकर हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं।
1: बहुत अच्छी बात सरिता दीदी आपको बता रही है बच्चों, कि हमारे

0: पिता की भूमिका हमारे जीवन में क्या है वो हम सब जानते हैं, और पिता को हम फादर्स डे पर कैसे विश करें ये हमारे बच्चों में बड़ी उत्सुकता रहती है सरिता।
1: और आजकल के बच्चे बहुत क्रिएटिव है
0: तो क्या बनाए। तो बच्चों आप कार्ड्स तो बहुत अच्छे से बना सकते हो फादर्स डे के लिए, एक अच्छा सा कार्ड बनाओ, फिर पापा के साथ में आपकी जो बचपन की यादें हैं उनको ताजा करो, और आप अपने साथ बिताया हुआ पिताजी का हर लम्हा उनसे उनके साथ शेयर करो, क्योंकि पिता को क्या चाहिए, सम्मान चाहिए और उनका आदर चाहिए, है ना। अगर आप आदर से उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए कुछ भी आप कर देते हैं, छोटा मोटा आप गिफ्ट ले आते हैं या फिर विश ही कर लेते हैं, या मिठाई या कुछ फ्रूट्स अगर उनको पसंद है तो आप लाकर दे दीजिए, तो पिताजी उससे भी खुश हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात, आपको तो आइडिया भी दे दिया ममता दीदी ने कि आप फादर्स डे पे आप क्या क्या कर सकते हैं। भाई हमारे बच्चे बहुत क्रिएटिव, वो अभी से फादर्स डे की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे हमने मदर्स डे 11 तारीख को सेलिब्रेट किया था मई में, ऐसे ही फादर्स डे बच्चों हम हमेशा जून की जो तीसरा रविवार आता है ना, हम उस दिन फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और पिता की बारे में हम कितना कुछ कह सकते हैं लेकिन हमें उनको शब्दों में पिरोना नहीं आता है, वे अच्छे मार्गदर्शक हैं, अच्छे आदर्श हैं, हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। कई बार होते हैं ना बच्चे तो भले नाराज हो जाते हैं लेकिन माता पिता वो इंसान होते हैं जो अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते और हमेशा उसके बुरे या अच्छे वक्त में हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं ममता।
0: बिल्कुल, और पिता ही होता है जो हमारे घर का बजट जो होता है पूरा देखता है।
1: बिल्कुल,
0: तो बच्चों वैसे पापा को इतना टाइम नहीं मिलता है जितना मम्मी आपकी केयर करती है, मम्मी आपका ध्यान रखती है, उतना पापा नहीं रख पाते हैं। पर आप ऐसा मत सोचिए कि पापा को आपसे प्यार नहीं है, क्योंकि पापा जो है वो आपसे बिना मिले भी आपके उनके मन में, उनके दिल में हमेशा आप रहते हैं, और आपके अच्छे बुरे की वो हमेशा परवाह करते हैं। तो आप हमेशा उनका सम्मान करें, और सम्मान देने के लिए ही ये पिता दिवस शुरू हुआ है।
1: बिल्कुल, और पिताजी बस मतलब कई बार वैसे तो हम सोचते हैं कोई दिन नहीं होता नहीं। माता पिता के बिना, लेकिन बच्चों अच्छा है ताकि हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। आजकल तो कितने सारे वीडियोस बन जाते हैं, तो आपके पुराने जितने भी पिक्चर्स हैं छोटे से लेकर बड़े
0: पापा के साथ में,
1: बिल्कुल, तो आप उसका एक अच्छा सा वीडियो बना सकते हैं, उस फोटोज को कोलाज बनाकर भी अपने फादर को सेंड कर सकते हैं, और बहुत सारे आइडियाज आप नए नए कार्ड्स, और आजकल बुके, हम फूल की बात नहीं कर रहे तो आजकल पेपर से भी बहुत अच्छे अच्छे रोज बन जाते हैं, फ्लावर्स बन जाते हैं, तो उसका बुके भी आप अपने फादर को दे सकते हैं। भाई ये छोटी छोटी चीजें ना हमें भी बहुत याद रहती है, और अपने माता पिता को इतनी खुशी दे देते हैं हम अपने पिता को, कि उस खुशी से वो कितना सोचते कि मेरा बच्चा मेरे लिए कितना कर रहा है। तो बच्चों ये चीजें हमें हमेशा, उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक हमें खुश रखा है, तो ये छोटी छोटी खुशियां जो हैं ये हमें हमारे माता पिता को जरूर देनी चाहिए, और पिता को खासकर जरूर देनी चाहिए, क्योंकि पिता क्या होता है ममता की अपनी फीलिंग्स कभी
0: शेयर नहीं करते,
1: माता रो सकती है, हंस सकती है अपने बच्चों के साथ, लेकिन पिता वो होते हैं जो हमारी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका जो दुख है वो हमारे साथ वो कभी शेयर नहीं करते हैं। तो पिता उस पेड़ की तरह होता है जिसके नीचे सारा परिवार पल रहा होता है, तो फादर्स डे पे जरूर अपने पापा के साथ कुछ अच्छे पल बिताएं, कुछ नई नई मेमोरीज भी बनाएं, और ओल्ड जो मेमोरीज है उनको भी जरूर उनके साथ शेयर करें।
0: बिल्कुल, पापा तो यही चाहते हैं बच्चों आपके, कि आप उनको समय दें, उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, उनसे अच्छे और बुरे की जो परख है उनकी, उनका जो मार्गदर्शन है वो आप जरूर प्राप्त करें। तो हम तो यही चाहते हैं कि बच्चों छोटी छोटी जो खुशियां हैं उनको आप कैसे इंजॉय कर सकते हैं, उस चीज को आप देखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, और रोमांचक जो आपका दिन है उसको बहुत रोमांचक बनाएं।
1: बिल्कुल, इतनी अच्छी अच्छी बातें और रोमांच से हमने भर दी है, तो फिलहाल इस कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा देते हैं।
0: हाँ हाँ, चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

जो गीत तो इतना अच्छा सुनाया है पिता के ऊपर, और सारे दृश्य हमारे जो लाइफ के हैं वो हमारे सामने तैरने लग जाते हैं कि हमने कौन कौन से अनमोल क्षण जो हमने अपने पिता के साथ बिताए हैं। इतनी अच्छी अच्छी पिता के बारे में जब हम बातें कर रहे हैं, तो अब आपको लिए चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, और वो है किस्से कहानियों।

0: का। भाई कहानियां कितना कुछ दे जाती है हमें सीख बनाकर। कई बार हमारी जिंदगी में हम ऐसे ऐसे पलों में फंस जाते हैं, ऐसे मतलब समस्याएं हमारी जिंदगी में आ जाती है बच्चों, तो हम उसमें फंस जाते हैं। तो ये कहानियों की छोटी छोटी जो सीख है वो हमें उनसे निकाल भी देती है, क्योंकि बचपन से ममता हम कहानियां सुनते आ रहे हैं और आज भी वो कहानियां
1: हमको याद है और हमारे जीवन में बहुत काम आती है।
0: बिल्कुल, कई बार हम फंस जाते हैं तो वो कहानियां हमें बाहर ले आती है। तो भाई ममता दीदी के पिटारे में आज कौन सी कहानी है, आइए सुनते हैं।
1: मैं आज जो बच्चों कहानी सुना रही हूँ वो बहुत पुराने समय की बात है। एक जो गांव था उसमें एक किसान था, उस किसान के चार पुत्र थे और चारों जो पुत्र थे वो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और बहुत आलसी थे। और जो किसान है वो बहुत मेहनती था और हमेशा बहुत मेहनत करता था, अनाज उगाता था, अनाज बेच कर आता था और फिर उससे जो पैसा आता था उससे अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। तो एक बार वो किसान जो है बूढ़ा हो चला था, तो एक बार वो बीमार हो गया और बीमार होकर वो खटिया पर पड़ गया। अब उसको जो सबसे ज्यादा चिंता होती है सरिता, अपने पिता को जो सबसे ज्यादा चिंता होती है बच्चों की होती है, तो वो खटिया पर लेटा लेटा सोचता रहा कि भाई मेरे जाने के बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है, क्योंकि हाँ बच्चों का क्या होगा और ये तो इतने आलसी बच्चे हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत नालायक हैं, तो क्या करेंगे और कैसे अपना जो खाना पीना है, रोजगार है, वो कैसे वो इनको आगे बढ़ाएंगे। तो उस चिंता में वो पड़ा था। उस समय उनका एक दोस्त उनके पास में आता है और दोस्त कहता है कि किसान तुम चिंता मत करो और मैं तुमको एक अच्छा सा मतलब रास्ता बताऊंगा जिससे तुम्हारे बच्चे सुधर जाएंगे। पर किसान जो था वो वृद्ध हो चला था, उसको लगा कि मेरा दोस्त सब संभाल लेगा और वो निश्चिंत होकर, और क्योंकि बीमार था तो उसकी
0: मृत्यु
1: हो गई। और मृत्यु के बाद में जो किसान का दोस्त था वो आया और उनके बच्चों को बोलता है कि बच्चों तुमको पता है तुम्हारे पिता ने बहुत सारा धन जो है वो खेतों में गाड़ दिया है। जो बच्चे थे वो पिता का दाह संस्कार करके आते हैं और जब उनको पता चलता है कि बहुत सारा धन हमारे पिता ने खेतों में गाड़ दिया है, तो बच्चे आओ देखते हैं न ताओ और चले जाते हैं खेत को खोदने। और चारों बच्चे चारों कोने ले लेते हैं और खोदते जाते हैं खेत को। बट पूरा खेत जो है सरिता वो खोदने के बाद में भी उनको कोई धन नहीं मिलता है। तब वो बच्चे जो किसान का दोस्त था उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको सही बात में पता है क्या कि मेरे पिता जो है वो सारा धन इस खेत में छोड़ के गए। तो जो पिता का दोस्त था वो बोलता है कि मुझे तो ऐसे ही बताया था, बट हो सकता है कि कहीं और रख दिया हो धन, या हो सकता है वो धन उपयोग में ले लिया हो। तुम एक काम करो, तुमने खेत तो खोद दिया है, अब इस खेत में अच्छे से बीज डाल दो और उसकी सिंचाई कर दो। तो बच्चों ने ऐसा ही किया, अच्छे बीज लाए और बीजों को खेतों में बिखेर दिया, उसकी सिंचाई करी और उस समय जो फसल सबसे अच्छी फसल उस किसान के खेत में लहलहाई। और जब फसल पकने को हुई तो फिर से वही दोस्त आया किसान का, उसने कहा अब किसान क्योंकि फसल पक गई है तो तुम फसल को लेकर और जाओ और गांव में बेच कर आओ, शहर में बेच के आओ। तो जब वो फसल कटने के बाद में लेकर और शहर में बेचने गए तो उनको बहुत सारा पैसा मिला।
0: तो यही तो असली धन था।
1: और उनकी जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं था।
0: बिल्कुल।
1: तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। और उसके बाद से बच्चों वो चारों बच्चे बहुत मेहनती हो गए, बहुत अनुशासन प्रिय हो गए और हमेशा अपने पिता को हमेशा धन्यवाद देने लगे और बहुत अच्छे से उन्होंने जीवन यापन किया।
0: भाई उनके पिता का दोस्त कितना अच्छा था, जो उनको कितनी सही राह पर लेकर आ गया था। एक बच्चे आलसी होते हैं, फिर वो मेहनत में उन्होंने चेंज कर दिया था, तो कितनी अच्छी बात उन्होंने कर दी है। भाई पिता होते ही ऐसे हैं कि मनपसंद किरदार बदलते हैं, बदलते हैं कई कलाकार, लेकिन जो सदैव से ही हमारा चहेता होता है वो होता है एक पिता। वो

0: होता है एक पिता जो हमें हमेशा सही राह दिखाता है, जैसे किसान के बच्चों को उसके पिता ने राह दिखाई है। तो भाई इतनी अच्छी प्यारी सी बात कर रहे हैं हम, इतनी अच्छी अच्छी सी स्टोरी सुनाई है हमारे बच्चों को, तो अब सुनवा दे एक प्यारा सा गीत।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, आज आओ बच्चों सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: और बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ अब घड़ी हमें इजाजत नहीं दे रही है हम आपसे और ज्यादा बातें करें, तो इजाजत दो अपनी दीदी को।
1: जय हिंद बच्चों।

अभी हमारे नन्हे मुन्ने साथियों ने सुना अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बगिया के फूल। ये आकाशवाणी उदयपुर है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को, फिल्म का नाम था संगीत।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
2: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
1: तो लेन देन?
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
2: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
2: हाँ।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को, फिल्म का नाम था संगीत।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
2: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ,
1: जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
6: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति को, फिल्म का नाम था दीवानगी। इससे पहले आपने जो गीत सुना उसमें आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था गीत। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे।
2: कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को, फिल्म का नाम था 100 डेज। इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, दिन के 1 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने की परियोजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीएसएफ के साथ मिलकर डीपीआर बनाई जाएगी। श्री वैष्णव आज बीकानेर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। रेल मंत्री ने कहा कि सरहदी क्षेत्रों में रेल नेटवर्क पहुंचने से न केवल क्षेत्र के लोगों को रेल सेवाएं मिलेंगी, बल्कि ये परियोजना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है, जिसमें हमारे अगर हम देखें सरूपसर से, जैतसर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से रोजरी बीकानेर, एक लाइन ये हो गई, और अनूपगढ़ से खाजूवाला, खाजूवाला से जैसलमेर और बाड़मेर होते हुए भिलड़ी। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं।
0: इस अवसर पर श्री वैष्णव ने लालगढ़ साबरमती ट्रेन को हरी झंडी दिखा

0: उठाकर रवाना किया। इस ट्रेन से गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। श्री वैष्णव आज ही जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। श्री वैष्णव 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण करेंगे। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग किया। मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करते हुए कहा कि योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इधर प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग के कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुए कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सिरोही के आबूराज में आयोजित हुए सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योग किया। नीट यूजी 2026 परीक्षा आज दोबारा हो रही है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है, जो अब से कुछ देर बाद 1:30 बजे बंद हो जाएगा। विद्यार्थियों को नए प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र से ही प्रवेश दिया जा रहा है। एनटीए के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जा रही है। इधर प्रदेश में री नीट परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। आज विश्व ऊंट दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अपने संदेश में श्री शेखावत ने कहा कि ऊंट केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि राजस्थान और गुजरात की संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। दिन के 1:05 हुए हैं। बहनों के लिए प्रस्तुत है उनका पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

0: भागदौड़ की जिंदगी को आज सुकून का आराम मिला। रेडियो की आवाज़ से घर के हर कोने को पैगाम मिला। किसी गज़ल के बहाने आज फिर दिल मुस्कुरा उठा। इतवार का यह दिन अपनों की और रेडियो के नाम रहा। बिना कुछ कहे भी आज बहुत कुछ कह गए हम। रेडियो की पुरानी धुनों में आज फिर बह गए। अब बेसब्री से इंतज़ार है उस प्यारे से कार्यक्रम का। सोचते हैं कि आज कौन सी रेडियो सखी सुनाएगी कोई नई बात। तो लीजिए, हमारे प्यारे श्रोताओं, सखियों, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। महिला जगत सुनने वाले हमारी सभी श्रोता बहनों को आकाशवाणी से पूनम मूथा और
1: गरिमा शर्मा का
0: प्यार भरा नमस्कार।

0: श्रोताओं, सखियों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी पूनम और आज दिल की बात रेडियो के साथ। पिता वो बरगद का पेड़ है, पिता वो बरगद का पेड़ है जो खुद धूप में तपकर बच्चों को छाव देता है। और आज के ये अल्फाज मेरे उस खास हीरो के नाम, मेरे पापा के नाम। गम के साए में भी मुस्कुराने का हुनर उन्होंने ही सिखाया है, मुश्किलों से लड़कर संभलने का फ़लसफ़ा बताया है। मैं टूट न सकूं कभी किसी भी तूफान में, मेरे पापा ने मुझे इस कदर मजबूत बनाया है। उन्होंने मुझे एक बागबा की तरह सींचा है, मेरी हर उम्मीद को पंख दिए हैं और मेरी ज़िंदगी की हर डाली को महकाया है। मैं शुक्रगुजार हूं उस ऊपर वाले का जिन्होंने मुझे ये अनमोल आंचल दिया और पापा की छाव देकर मेरी तकदीर को धन्य कर दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की बदौलत हूँ। रब से हर पल बस यही दो दुआएं मांगती हूँ कि मेरे पापा का हर सवेरा सेहत और खुशियों से महकता रहे, और अगर मुझे अगले जन्म में भी ज़िंदगी मिले तो मैं बस यही दुआ करूँगी कि भगवान मुझे हर जन्म में उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं का साया नसीब करे। मेरे मार्गदर्शक, मेरे प्रेरणा स्रोत, हर मुश्किल में मेरा साथ देने वाले मेरे पापा को आज इस रेडियो के माध्यम से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू।
1: बहुत अच्छी बात कही पूनम आपने। मतलब पिता कहते ना कि भाई माँ के संघर्ष की तो हर बात होती, पर पिता का त्याग बलिदान कहीं ना कहीं मतलब पीछे छुप जाता है, और उनकी सारी ये त्याग और संघर्ष को बताने के लिए हम फादर्स डे मनाते हैं। माँ के प्यार की अक्सर चर्चा होती है, लेकिन एक पिता के त्याग, संघर्ष और समर्पण भी किसी से कम नहीं होता। यही कारण है कि हर जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह खास दिन 21 जून को पड़ रहा है। इस अवसर पर लोग अपने पिता को धन्यवाद देते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उनके योगदान को याद करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि फादर्स डे की शुरुआत किसी सरकार या संगठन ने नहीं की, बल्कि एक बेटी ने अपने पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए की थी। यह कहानी है अमेरिका की सोनोरा स्मार्ट डॉट की, जिनके पिता ने पत्नी के निधन के बाद अकेले 6 बच्चों का पालन पोषण किया। अपनी मां के सम्मान में मनाए जाने वाले मदर्स डे से प्रेरित होकर सोनोरा ने सोचा कि पिता के लिए भी एक विशेष दिन होना चाहिए। आज फादर्स डे दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत के पीछे छिपी यह भावनात्मक कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। आइए जानते हैं कि फादर्स डे कब मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की और असली वजह क्या थी। पिता दिवस की शुरुआत कर श्रेय अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य की रहने वाली सोनोरा स्मार्ट डॉट को दिया जाता है। वर्ष 1909 में मदर्स डे पर एक चर्च प्रवचन सुनते समय उनके मन में विचार आया कि जिस तरह माताओं के सम्मान में एक दिन मनाया जाता है, उसी तरह पिताओं के लिए भी एक विशेष दिन होना चाहिए। साल 1966 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने जून के तीसरे रविवार को आधिकारिक तौर पर फादर्स डे घोषित किया था। इसके बाद 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इसे एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में कानूनन लागू किया। 2026 के फादर्स डे की थीम पिता और पितातुल्य व्यक्तियों के साथ प्रशंसा, जुड़ाव और यादगार पल बिताने पर जोर देता है। पिता हमारे जीवन का वह मजबूत स्तंभ होते हैं जो हर मुश्किल समय में पूरे परिवार को सुरक्षा व संबल देते हैं। उनके प्रति आभार जताने का यह एक बेहतरीन अवसर है। इस बार उन्हें कोई सामान्य उपहार देने के बजाय उनकी सेहत, उम्र के अनुसार कोई उपयोगी चीज भेंट करें जो उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करे।
0: तो माता पिता और का प्यार और उनका आशीर्वाद किसी एक दिन या तारीख का मोहताज नहीं होता, बल्कि यह जीवन का वह अनमोल पूंजी होता है जो हर पल हमारे साथ रहता है। तो श्रोताओं बहनों, आइए सुनते हैं संगीत की चलते हैं संगीत की तरफ और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: स्वस्थ तन और निरोगी काया, यही तो देश की असली शान है। आयुष्मान भारत योजना से महका हर भारत का अरमान है। कोई भी न छूटे अब इलाज से, ये सबका विश्वास है। आयुष्मान भारत की यही गूंज निरोगी देश की नई आस है। जब तक हर देशवासी का स्वास्थ्य न हो मुकम्मल, आयुष्मान भारत का यह कारवा चलता रहेगा अनवरत।
1: पूनम, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आयुष्मान भारत योजना मुख्य रूप से देशवासियों को गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज के कर्ज जाल से बचाकर, बीमारियों की शुरुआती जांच करके और आधुनिक स्वास्थ्य ढांचा तैयार करके पूरे देश को भारत सरकार की इस क्रांतिकारी पहल के तहत देशवासियों को निरोगी बनाने के लिए मुख्य चार स्तंभों पर काम किया जा रहा है।
0: बिल्कुल गरिमा, तुम जो बता रही हो कि आज हमारे श्रोता बहनों को कि आयुष्मान भारत से हम अपने देशवासी को कैसे निरोगी कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो इसका पहला जो है वो मुफ्त इलाज से वित्तीय सुरक्षा है ना।
1: हाँ।
0: जो कि 5 लाख का स्वास्थ्य कवर इस योजना के तहत देश के जो अभी 12 करोड़ से अधिक जो गरीब और कमजोर परिवार हैं, उसमें प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज होता है और सीनियर सिटीजन्स को भी विशेष सुरक्षा मिलती है और इलाज के खर्च में भी इससे कमी आती है और इसकी बीमारी की शुरुआती जाँच भी होती है।
1: घर के पास प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देश भर में 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर सक्रिय हैं। ये केंद्र लोगों को उनके घर के नज़दीकी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। मुफ्त जांच और दवाइयां इन केंद्रों पर ब्लड प्रेशर, शुगर और सामान्य कैंसर है ना, उसकी जांच की जाती है जिससे बीमारी शुरुआत स्टेज में ही पकड़ में आ जाए।
0: बिल्कुल, और बीमारी को रोकने के लिए इन केंद्रों पर लाखों की संख्या में योग और वेलनेस सेशन भी आयोजित किए जाते हैं। और अगर हम बात करें डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की, तो आभा आईडी जिसको हम बोलते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 79 करोड़ से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट बनाए जा चुके हैं और मरीज के सारे मेडिकल रिकॉर्ड जिसमें जांच पर्चे रिपोर्ट्स सभी ऑनलाइन लिंक रहते हैं और इससे देश के किसी भी कोने में डॉक्टर पुरानी मेडिकल हिस्ट्री को देखकर भी तुरंत इलाज कर सकते हैं।
1: और चौथा स्तंभ है इसका मजबूत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, नए अस्पतालों और मेडिकल सीटों का निर्माण। देश में नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। अगले कुछ वर्षों में हजारों नए मेडिकल सीटें जोड़ी जा रही है ताकि देश में डॉक्टरों की कमी पूरी हो सके और अच्छा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके।
0: बिल्कुल, तो गरिमा हमने ये बहुत सारी बातें हमारे श्रोता बहनों को बता दी, तो क्यों ना हम फिर से सुना दें गीत
1: जी।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आप सभी श्रोता बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्थिरता और आत्मखोज की शक्ति को हम सभी को अपनाना चाहिए। स्वयं की इस यात्रा को अपनाएं, स्वयं के माध्यम से स्वयं की ओर, क्योंकि योग आपके जीवन में वर्ष जोड़ता है और आपके वर्षों में जीवन भर देता है। आज और हमेशा इसका आनंद लें, क्योंकि शक्ति का संचार करें, तनाव को बाहर निकालें।
5: सदियों पहले संस्कृत के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक भर्तृहरि ने योग की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा था, गांभीर्यम यस्य पिता क्षमा न जननी शांति क्षीरम गेहिनी सत्यम सूर्यम दया च भगिनी भ्राता मन संयम सये भूमि तलम दिशो सपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम एते यस्य कुटुंबिना वद सखे कस्माद भयम योगिना। इसका अर्थ यह है कि नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से व्यक्ति में साहस जैसे अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं, जो पिता के समान रक्षा करता है, क्षमाशीलता जो माता के समान होती है, और मानसिक शांति जो एक स्थायी मित्र बन जाती है। योग के नियमित अभ्यास से सत्य हमारा बच्चा बन जाता है, दया हमारी बहन, आत्मसंयम हमारा भाई, और पृथ्वी हमारा पालना बन जाती है, और ज्ञान हमारी भूख को तृप्त करता है।
4: बहुत ही अच्छी बात बोली गरिमा कि हम पूरा परिवार ही हमारा योग के द्वारा आ चुका है। तो योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है वो तुम्हारी बातों से पता चली गया है। तो श्रोताओं बहनों, वर्ष 2026 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून 2026 को हम आज पूरे विश्व में मना रहे हैं, और इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम भी सभी जगह हो रहा है, और ख़ास करके पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, जहां प्रधानमंत्री जी स्वयं इस समारोह का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो इसकी आधिकारिक थीम भी है कि इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है, जिसको हम कहते हैं योगा फॉर हेल्दी एजिंग।
5: इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती उम्र में लोगों को शारीरिक, मानसिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और सक्रिय बनाए रखना है। सखियों, आपको इसके साथ साथ एक

0: संदेश देना चाहूँगी मैं। आज हमारे उदयपुर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आज शहर में जिला स्तरीय समारोह प्रातः 6 बजे मंदारी दर्शक मंडप पर गांधी ग्राउंड में आयोजित हुआ था, जिसका संदेश था समत्वम योग उच्चते, मन का संतुलन ही योग है।
1: बिल्कुल, तो योग मूलतः आपकी आत्मा के लिए एक अभ्यास है जो आपके शरीर के माध्यम से कार्य करता है। और अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं अदम्य हैं, वह बिना थकी एक ही दिन में कई भूमिकाएं निभाती है और घंटों तक बहुत परिश्रम करती है, चाहे वो घर हो, दफ्तर हो, या हर चीज़ को संतुलन बना के रखती है। तो अगर हम बात करें कि योग प्रशिक्षक के रूप में जो महिलाओं की भूमिका होती है वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो अपने प्राकृतिक धैर्य, करुणा और सहानुभूति के माध्यम से शिक्षार्थियों के साथ गहरा भावनात्मक संबंध भी बनाती है। इसी से कि योग प्रशिक्षक के रूप में महिलाओं की भूमिका किस तरह से, किस किस रूप में है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में। जैसे कि तो महिला प्रशिक्षक
0: विशेष रूप से महिलाओं के सर्वांगीण कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें हार्मोन संतुलन और तनाव प्रबंधन प्रमुख है। बच्चों की शिक्षा, महिलाओं में स्वाभाविक गुण होने के कारण वे बच्चों को योग सिखाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होती है, जिससे बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है। इतिहास और विकास, प्राचीन काल से ही तंत्र और भक्ति परंपराओं में महिला योगिनियों जैसे मीराबाई, लल्लेश्वरी ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर योग के प्रसार में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आधुनिक योग का वैश्वीकरण, प्राचीन काल में योग मुख्य रूप से भारत तक सीमित और पुरुषों पर केंद्रित था। 20वीं सदी की शुरुआत में इंद्र देवी जैसी अग्रणी महिलाओं ने इस परंपरा को तोड़ा। उन्हें टी कृष्णामाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली महिला और पश्चिमी व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने चीन और अमेरिका जैसे देशों में योग स्कूलों की स्थापना करके इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया है।
1: बिल्कुल, और साथ साथ योग कक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भी महिला प्रशिक्षकों ने महिलाओं में आत्मनिर्भरता और नेतृत्व कौशल विकसित किया है। तो योग का अभ्यास महिलाओं को अपने शरीर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए भी चुनौती देता है और आत्मविश्वास भी देता है। तो इसी तरह से हमें हमारे जीवन में योग अपनाना चाहिए, और योग मन, शरीर और आत्मा में ऊर्जा, शक्ति और सुंदरता का संवर्धन है।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोताओं, फिर से वक्त हो चुका है संगीत सुनने का।

0: अल्फाज जहाँ खत्म होते हैं वहाँ से सुरों के कारवा शुरू होते हैं।
1: सांसें चलती है तो बचती है धुन जिंदगी की, संगीत ही तो पहचाने हर बंदगी की।
0: छू लेती है जो रूह को वो आवाज़ तुम हो, मेरे दिल का प्यारा सा साज तुम हो।
1: बेजान जिंदगी में कोई मनमीत होना चाहिए, मन का मीत न हो तो साथ संगीत होना चाहिए।
0: वाह, कितनी खूबसूरत और गहरी बात कह रही है तुम। तो जब जिंदगी बेजान लगने लगे ना, तो दिल को समझने वाला भी कोई साथी मनमीत होना चाहिए।
1: हाँ।
0: जो इस सूनेपन को दूर कर दे।
1: बिल्कुल।
0: और अगर वो ना भी हो तो संगीत से बेहतर कोई दूसरा हमसफर नहीं होता।
1: अरे संगीत का तो इतना जादू होता है कि आप कहाँ खो जाओ आपको पता भी नहीं पड़ेगा।
0: बिल्कुल। तो संगीत बिना कुछ कहे दिल की हर बात तो समझ लेता है, अकेलेपन में भी सुकून देता है। तो श्रोताओं बहनों, आज विश्व संगीत दिवस है जो कि रविवार 21 जून को मनाया जा रहा है, और इसे पहली बार 1982 में फ्रांस में फेटेडाला म्यूज़िक के रूप में शुरू किया गया। और इस दिन संगीत की सार्वभौमिक भाषा का जश्न मनाने और कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन करने के लिए समर्पित है।
1: और मुख्य थीम 2026 की है संगीत, विश्व को जोड़ने वाली सार्वभौमिक भाषा। मतलब संगीत वो माध्यम है जिससे हम पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल। और पिछले कुछ वर्षों में इस महोत्सव ने अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल की है। दुनिया भर में 120 से भी अधिक देशों में मनाया जाने लगा है, और इस दिन लोग अपने स्थानीय क्षेत्रों में भी संगीत सुनते और बजाते हैं। और आप सड़कों पर कई देखेंगे, कैफेज में, पार्कों में, पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थान हो गए, तो हर जगह आजकल संगीत सुनाई देता है। और इन संगीत कार्यक्रम के लिए आपको कोई भुगतान की भी आवश्यकता हाँ। नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे संगीतकार जो होते हैं वो निशुल्क प्रदर्शन करते हैं।
1: भाई संगीत में तो वो जादू है जो कहते हैं ना कि अपने आत्मा को भी बिल्कुल तृप्त कर देता है।
0: बिल्कुल।
1: इंसान की जिंदगी से संगीत का रिश्ता हमेशा से अटूट रहा है। ऐसे में अगर आप जीवन भर तनाव से दूर और खुशहाल रहना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके संगीत से रिश्ता कायम कर लीजिए। कहने का मतलब, अगर आप संगीत सुनना पसंद करते हैं मतलब आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं। संगीत की खूबी भी यही है कि जब चाहे जैसा चाहे सुने और फिर अपना मूड बदल लें। इसे जरूरी है संगीत।
0: बिल्कुल। और श्रोता बहनों, संगीत सुनने के फायदे भी क्या होते हैं कि हमारा तनाव दूर होता है, हमारी चिंताएं दूर होती है, हमारे याददाश्त और एकाग्रता में मतलब उसकी क्षमता बढ़ती है, हमारी फोकस बढ़ता है, नींद भी अच्छी आती है। कई बार हम डिप्रेशन और अवसाद में होते तो वो दूर होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण होता है, अकेलापन भी दूर होता है और सामाजिक जुड़ाव भी महसूस होता है। तो संगीत अपने ज़िंदगी में हमेशा शामिल करिए और संगीत सुनते रहिए, हमारा रेडियो भी सुनते रहिए। और अभी हम बात करेंगे जो कि हमारे कार्यक्रम में सबसे अधूरी चीज़ रह जाती है हमेशा।
1: सखिया बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है।
0: बिल्कुल।

0: करीमा, तो तुम अभी बता रही हो कि अभी जो गर्मी चल रही है, तो गर्मी में हम ठंडी ठंडी चीज़ें तो खाते ही हैं, और ख़ास करके रायता ऐसी डिश है जिसको हम हर घर
1: जिसके
0: में
1: बिना
0: बनाते
1: गर्मी
0: हैं।
1: बहुत अधूरी है।
0: बिल्कुल। और रायते को हम बात करें तो दक्षिण से उत्तर भारत तक हम कई प्रकार के रायते होते हैं और हम किसी न किसी डिश में शामिल करते हैं। तो आज थोड़े से तुम बता दो श्रोता बहनों को कि हम किस तरह के रायते खा सकते हैं।
1: हम ककड़ी का रायता खा सकते हैं, बूंदी का रायता तो सबसे अच्छा होता है। बेसन की छोटी छोटी कुरकुरी बूंदी को दही में मिलाकर बनाया जाता है। यह बिरयानी, पुलाव, पराठों के साथ सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। मसाला रायता, इसमें केवल सादे दही के साथ भुना जीरा पाउडर, काला नमक, पुदीना और लाल मिर्च मिलाई जाती है।
0: बिल्कुल
1: खीरे का रायता कद्दूकस किए हुए या बारीक कटे खीरे से बनता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। मिक्स वेज रायता, इसमें प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च को एक साथ बारीक काट कर दही में मिलाया जाता है। यह बिरयानी, पुलाव, पराठे जैसे मसालेदार भारतीय व्यंजनों के साथ परोसा जाता है, जो भोजन में स्वाद और लज्जत बढ़ाता है।
0: बिल्कुल,
1: लौकी
0: ऐसे
1: का
0: बहुत सारे
1: रायता,
0: रायते, सब्जियों को भी शामिल कर सकते हैं और कुछ फ्रूट्स को भी शामिल करके हम रायता बना सकते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल रायता हो गया, मिक्स फ्रूट हो
1: हाँ
0: गया, और तड़का रायता हो गया, कुछ ड्राई फ्रूट्स वाले भी होते हैं, मखाना रायता भी हम अपने डाइट में
1: और
0: शामिल कर
1: फ्रूट वाले
0: सकते
1: रायते
0: हैं।
1: तो मतलब बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं।
0: बिल्कुल, तो हमने बहुत सारी बातें आज अपने श्रोता बहनों को कर दी है, तो श्रोता
1: हाँ
0: बहनों को जाते जाते कुछ पंक्तियाँ हम ज़रूर बोलना चाहेंगे
1: बिल्कुल,
0: कि यादों की एक महकती हुई शाम छोड़ जाएंगे, यादों की एक महकती हुई शाम छोड़ जाएंगे, लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ जाएंगे, माना कि ये वक्त गुजर जाएगा मगर हम अपनी यादों के निशान छोड़ जाएंगे। तो इसी याद के साथ कि हम फिर आपके साथ आते रहेंगे नए नए कार्यक्रम, नई नई बातें लेकर, तो अभी विदा लेते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़, फिल्म का नाम था हर दिल जो प्यार करेगा। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़, फिल्म का नाम था जिंदगी एक जुआ। फिल्म संगीत की अंतिम सौगात लीजिए, सुनिए जॉली मुखर्जी और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म का नाम आतिश।

इसी के साथ फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, लीजिए सुनिए विकास चर्चा। आज का विषय है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट।

लीजिए सुनिए विकास चर्चा। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भूमि संरक्षण, मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पर्यावरण पहल है। इसके तहत अरावली पर्वतमाला के आसपास 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी विकसित की जा रही है ताकि थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार और भूमि क्षरण को रोका जा सके। यह परियोजना अफ्रीका की प्रसिद्ध ग्रेट ग्रीन वॉल पहल से प्रेरित है।

अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। थार रेगिस्तान को रोकना। यह दीवार थार मरुस्थल की धूल और रेतीले तूफानों को उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फैलने से रोकेगी। यह एक ग्रीन बैरियर की तरह काम करती है। वनीकरण और जैव विविधता। अरावली के आसपास के बंजर क्षेत्रों और नष्ट हो चुके वनों को पेड़ लगाकर फिर से हरा भरा किया जाएगा। यह पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के रेगिस्तान से आने वाली धूल के लिए एक अवरोधक का काम करेगी।

जल संरक्षण। इस परियोजना के तहत पुराने और सूख चुके जल निकायों, तालाबों और झीलों का पुनरुद्धार किया जाएगा ताकि भूजल स्तर सुधर सके। इससे जल की गुणवत्ता और मात्रा में भी सुधार होगा। प्रदूषण कम करना, यह क्षेत्र प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में काम करेगा जिससे वायु प्रदूषण पर लगाम लगेगी। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि अरावली श्रृंखला की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है जो कार्बन पृथक्करण में मदद करेगा, साथ ही वन्य जीवों

के लिए आवास प्रदान करेगा। कृषि वानिकी और जल संरक्षण गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी से सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त यह आय और रोजगार के अवसर पैदा करने, खाद्य सुरक्षा में सुधार करने तथा सामाजिक लाभ प्रदान करने में भी मदद करेगा।

0: अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत मुख्य रूप से चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। इस योजना का विस्तार प्रमुख रूप से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के 29 जिलों में लागू किया जा रहा है। इस योजना के पहल के तहत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्वदेशी पौधे लगाए जा रहे हैं और 1000 स्थायी नर्सरियां विकसित की जा रही हैं। साथ ही उपग्रह मानचित्रण के जरिए पेड़ों की वृद्धि की निगरानी भी की जाएगी। शुरुआत में इसे कुछ किलोमीटर के बफर जोन पर केंद्रित किया गया था, लेकिन अब इसका विस्तार संपूर्ण अरावली पर्वतमाला और उसके आसपास के जिलों में किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक यह और विशेषता यह भी है कि भारत के जलवायु लक्ष्यों और भूमि क्षरण तटस्थता को 2030 तक हासिल करना है। इसी के साथ विकास चर्चा यही समाप्त होती है। अभी आप सुन रहे थे विकास चर्चा। ये आकाशवाणी उदयपुर है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युग चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से

0: योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
1: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताबते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी

0: अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रूपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार

0: मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांतिवार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। दिन के 2:30 हुए हैं। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम रामा भाई राम राम
1: राम राम अनुसी वैसा राम राम
0: कृषि जगत कार्यक्रम हुणवा वाला हंगला आपण किसान भाई बहना ने भी आपण राम राम सा।
1: देखो साहब अपन प्रोग्राम चालू हुए है और देखो आप अभी रोज रोज नई नई जानकारियां भी लेने आया हाँ। तो देखो साहब आज योग दिवस भी है और योग दिवस पे आज अपा किसान भाई ने जानकारी देंगा कि योग और किसान स्वास्थ्य बारे में सर।
0: बिल्कुल रामा भाई, देखो सब पहले तो आपने हंगला किसान भाई ने और लारे लारे आपने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गणी गणी शुभकामना।
1: हाँ,
0: देखो साहब हर साल 21 जून ने आका जगत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जावे। योग जो है भारत री प्राचीन और अमूल्य धरोहर है जिन्हें आज भी आकी दुनिया स्वस्थ जीवन रो मार्ग माने है। योग खाली व्यायाम नहीं है बल्कि शरीर मन और आत्मा ने जोड़वा वाली एक संपूर्ण जीवन पद्धति आप मानी सका। हाँ
1: बिल्कुल सा, आज देखो विश्व में करोड़ों लोग योग ने अपना दैनिक जीवन रो हिस्सों बनाई रखी हो सा। अंडो उद्देश्य केवल रोगों बचाव नहीं है बल्कि स्वस्थ संतुलित और सकारात्मक जीवन जीनो भी है सा। अणी अवसर पर देखो आज आप चर्चा करेंगा कि योग और किसान स्वास्थ्य
0: कई है। बिल्कुल सा, देखो किसान री बात अगर आप करें तो किसान अपने देश री रीढ़ री हड्डी है। खेती में दिन रात मेहनत करे, वे पूरा देश रे वास्ते अन्न पैदा करे, वे अपना अन्नदाता है। पर अक्सर आप देखा कि दूजा रो पेट भरवा वालों किसान अपना स्वास्थ्य ने पर्याप्त ध्यान नहीं दे पावे। खेती रो कार्य वो शारीरिक रूप घने कठिन माना आपा तो लंबा समय तक झुकिन काम करनो, भारी सामान उठानो, तावड़ा में मौसम री मार सहनो, अनियमित दिनचर्या और तनावपूर्ण परिस्थितियां जो किसान भाइयारे स्वास्थ्य पे घणो प्रभाव डाले और परिणाम यो वे कि कमर रो दर्द, घुटना री समस्या, थकान, उच्च रक्तचाप और मानसिक तनाव जैसी परेशानियां आप आणा रे देखवा में आवे है।
1: बिल्कुल सा, ऐसा टाइम में देखो किसान भाइयारे वास्ते योग एक सरल और प्रभावी उपाय आपा कह सका। रोज कुछ टाइम निकालने योग करवाऊं शरीर में लचीलोपन आवे, मांसपेशियां मजबूत हुए और कार्य करवारी जो क्षमता है वहीं में भी वृद्धि हुए। अंडे अलावा देखो आप यूँ भी कह सका कि ताड़ासन है, भुजंगासन है, वज्रासन है, जैसा जो सरल और आसान जो योगासन है वही किसान भाई अगर अपने रोज अगर अपने योग करेगा तो बनाने विशेष रूप

0: लाभकार भी रहेगा सा।
1: बिल्कुल देखो अंडलारे लार देखो अनुलोम विलोम भ्रामरी जैसा प्राणायाम जो है वे मन ने शांत रखे, तनाव ने कम करवा में सहायता करे। आज जनान खेती री कई चुनौती आप देखा हाँ तो मानसिक संतुलन बनाया रखवा में भी यत्र ही आवश्यक है जितरो शारीरिक स्वास्थ्य। योग किसान भाइया ने केवल स्वस्थ नहीं बनावे बल्कि और अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक भी बनावे। तो देखो रमा भाई अन्य विषय पर आप और भी बात कर रहा कि आगे और भी बात कर रहा पर वणी पहली आपको तो अपने किसान भाई और मनोरंजन रो ध्यान रखता तक लंबी बात नहीं करी ने वणा ने एक बढ़िया सो एक गीत सुनाई था सा।
0: हाँ सर।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो रामा भाई, देखो आपा बढ़िया सो गीत सुनी, और गीत पहले आपा बात करी रहा योग और किसान स्वास्थ्य। अब आपने बातचीत ने आगे बढ़ावा, और देखो आपा बात करा कि योग री सब मोटी विशेषता कही है। देखो योग करवो कही वेवे कि कहीं भी विशेष साधना या ज़्यादा आने में कहीं खर्चरी आवश्यकता नहीं वेवे। किसान अपने घरे खेत री मेड या कहीं भी खुली जगह पर योगाभ्यास कर सके हैं।
3: बिल्कुल सर, सुबह उठने उठवारे समय योग रे लिए सर्वश्रेष्ठ मानो जावे हैं। नियमित योगाभ्यास अपने शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहे और दिन भर अपने कार्य करवारी क्षमता भी बढ़े हैं। साथ में यो देखो रक्त संचार ने बेहतर बनावे और शरीर में जो रोगा और लड़वारी शक्ति है विनय प्रदान भी करे सर।
2: देखो योग रे साथे साथे आपने यो भी देखनो है कि संतुलित भोजन भी आपने लेनो, पर्याप्त पानी पीनो, पर्याप्त विश्राम भी वतरो इस महत्वपूर्ण वे। अगर किसान नाना वातारो ध्यान रखे और प्रतिदिन कुछ समय योग ने देते बनारो स्वास्थ्य समस्याओं मची सके। आपा देखा हाँ कि योग करनो खूब आसान है। अंडे वास्ते आपने न तो कटी महंगी महंगी मशीनरी जरूरत पड़े, न आपने कटी एक कणी कमरा री आवश्यकता है, न कणी ऐसी जगह री आवश्यकता है जटे जैन आप योग कर सको। योग एक असी सरल पद्धति है जिन्हें आप खेत किनारे पे कर सकी रहो, आप चांदनी माते कर सकी रहो, आप आंगन में बैठिन कर सकी रहो, रुकड़ा रे नीचे बैठिन कर सकी रहो। बस आपने कई भी जरूरत नहीं है, खाली एक चटाई काफी वे। और अगर आपने चटाई भी नहीं मिली रही तो आप जमीन पे बैठिन भी आप आराम योग कर सकी रहो। तो योग रे वास्ते आपने कहीं भी तामझाम री जरूरत नहीं पड़े है, बहुत ही सरलता रे साथ आप अपनी पद्धति ने अपनाई सको और आप स्वस्थ रह सको।
3: बिल्कुल सर, और देखो आज तो खूब सारा गाँव में अपने देखो सामूहिक योग कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। ऐसा कार्यक्रम नहीं केवल स्वास्थ्य जागरूक बढ़ाए बल्कि अपने जो समाज है वहीं में एकता और सकारात्मक वातावरण भी निर्मित करे सा।
2: तो बिल्कुल देखो रामा भाई, अपना किसान भाई ने ये कहवा कि स्वस्थ किसान जो है समृद्ध कृषि और मजबूत राष्ट्र की नींव वेवे। अणि वास्ते अणि योग दिवस पे अपन किसान भाइया ने यो कहवा कि आप यो संकल्प लो कि योग केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखना है बल्कि आपने दैनिक जीवन रो हिस्सो बनावनो है। छोटा छोटा योग आप कर सका हाँ, जैसे और अगर आपने बिल्कुल भी समय नहीं मिले कि आप कहीं भी नहीं कर सकी रहा हो तो भी आप खाली एक सूर्य नमस्कार भी अगर आप कर लेवा तो सूर्य नमस्कार में जितने भी योगा क्रिया आप करा बना रो छोटा छोटा छोटा छोटा रूप में सूर्य नमस्कार अपने आप में पूरा योग वेवे है बनी ना आप कर सका। और सूर्य नमस्कार ने सीखवारी पद्धति देखो आप अबारू अटे रेडियो माते तो नहीं बताई सका, लेकिन आजकल काफ़ी सुविधाजनक स्थितियां हैं कि आपने किसान भाई जो है इंटरनेट पे देख सके, और भी इंटरनेट पे नरे प्लेटफॉर्म है जटे आप सूर्य नमस्कार ने आप देख सको। क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज़ है जो आपका पूरा शरीर लचीलोपन देवे।

0: सूर्य नमस्कार ऐसी चीज है जणी आपरे सूर्य आपरे शरीर रो माथो लगाइन पग रे आंगलिया तक रो आपरे एक्सरसाइज वे जावे है और वंडे वास्ते आपने कड़ी मशीन की जरूरत नहीं पड़े। अंडे अलावा देखो आप प्राणायाम री बात करा तो एक जगह बैठिन खाली आप सांसा माते नियंत्रण राखी प्राणायाम कर सका, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम कर सका हाँ, ये भी आपने वास्ते घणो फायदेमंद वे। तो आप कुल मिले अपने किसान भाई ने यूस कहवा हाँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माते आप स्वास्थ्य रो ध्यान रखो, आपरे स्वास्थ्य ने आगे आप स्वस्थ रहे हो तो आप अच्छी तरह काम करो और आप अच्छी तरह काम करो तो बढ़िया खेती बाड़ी में हो अनाज पैदा हुई और पूरा राष्ट्र जो है आपरे स्वास्थ्य रहे पाछे पूरा राष्ट्र स्वस्थ रही सके। यानी संदेश रे साथ ही रामा भाई आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक दान और शुभकामना देवा और सुना एक बढ़िया सो गीत।
1: हाँ सर।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो देखो सर, आप बढ़िया सो गीत सुनियो, गीत रिलारे लारे संदेश भी सुने, और अब आप कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और एक योजना री तरफ बढ़ा। आप किसान भाइयों बात करा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, यह कई चीज है।
4: बिल्कुल सर, देखो सर, प्रधानमंत्री कृषि सूचना, जैसो कि आप जाना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की सभी बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप आप कहवा तो खेती पर निर्भर करें। कृषि की सफलता काफ़ी हद तक पानी की उपलब्धता पर निर्भर करे, और अन्य समय पर सिंचाई नहीं मिले तो फसल की वृद्धि ने भी प्रभावित हुए, उत्पादन में भी कमी आवे। यही कारण है कि जल प्रबंधन और सिंचाई जैसी जो सुविधाओं और विस्तार है वो कृषि विकास के लिए अत्यंत आवश्यक मानी गया है।
3: बिल्कुल, और इस आवश्यकता ने ध्यान में रखते तका भारत सरकार 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रो शुभारंभ की दो। अणि योजना रो उद्देश्य देश रे प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाना है, उपलब्ध जल संसाधन ने अधिकतम और वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करना। कहवा रो मतलब ये से कि योजना रो मूल मंत्र है हर खेत ने पानी और प्रति बूंद अधिक फसल।
4: बिल्कुल सा, हर खेत रो पानी रो अर्थ है कि जणी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा पर्याप्त मात्रा में नहीं है वटा तक अपने पानी पहुंचाया जाए, ताकि वटे भी किसान भाई केवल वर्षा पर निर्भर नहीं रहे। और प्रति बूंद अधिक फसल रो उद्देश्य यो है कि सुनिश्चित करना अपने यो है कि पानी रो उपयोग अत्यंत सावधानियों और दक्षता के साथ किया जाए, ताकि कम पानी में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें।
3: देखो सर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रे अंतर्गत जल संरक्षण, जल संचयन पे भी बल दियो जावे, वर्षा जल रो संग्रह।

0: करनो, तला वारो निर्माण करनो, ते खेत हे तलैया है, जलाशय रो विकास, जल स्रोतारो संरक्षण अने योजना रो महत्वपूर्ण घटक है। आना प्रयासों न केवल सिंचाई री सुविधा बढ़े बल्कि भूजल स्तर ने भी बनाए राख में हमें सहायता मिल सके
1: बिल्कुल
0: है।
1: सर, अणि योजना रे अंतर्गत किसान भाइयों ने आधुनिक सिंचाई तकनीक और अपनावार लिए प्रोत्साहित भी किया गया है और ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ हैं वह जल संरक्षण की दृष्टि अत्यंत उपयोगी भी है सर।
0: बिल्कुल सर, देखो ड्रिप सिंचाई प्रणाली में पानी सीधा पौधा रे जड़ा तक पहुँचे, जणु कही है पानी री बर्बादी कम वेवे, अणि पौधा ने आवश्यक मात्रा में नमी मिले और उत्पादन में भी वृद्धि वेवे। वही टेई सापा देखा स्प्रिंकल प्रणाली में पानी जो है फवारा रे माध्यम खेता में फैलायो जावे, जणु सिंचाई ज़्यादा और अधिक समान रूप वे जावे है।
1: बिल्कुल सर, अणा आधुनिक तकनीकों ने उपयोग में लेने किसान भाई जो जल है श्रम और ऊर्जा तीनों की बचत कर सके और साथ ही अपने जो उर्वरक रूप बेहतर उपयोग भी संभव हो जाए, अणि में खेती की लागत भी कम आवे और लाभ भी बढ़े सर।
0: बिल्कुल साणी योजना देश रा लाखों किसान लाभान्वित वेरा है। किसान भाया ने अणि योजना री विस्तृत जानकारी अगर लेनी है तो निकटतम जो कृषि विभाग है, कृषि पर्यवेक्षक है, पंचायत समिति है, अट्टे जैन आवी है बात कर सके हैं।
1: बिल्कुल सर, और आपा अंत में यो कहना चाहूँगा कि जल ही जीवन है और कृषि रो आधार भी है, तो अपने पानी रो प्रत्येक बूंद रो महत्व समझना है और बिल्कुल विवेकपूर्ण अंडो उपयोग करना है सर।
0: बिल्कुल सर, तो पानी बचावनो है, आधुनिक सिंचाई अपनावनी है और खेता ने समृद्ध बनावनो आणि संदेश रे साथे आपा अणि विषय ने अटिस विराम देवा, और क्योंकि थोड़ी देर में आपने जावारो भी टाइम भेजी है तो जावता जावता आप केवो तो एक बढ़िया सो गीत सुन ला सा।
1: हाँ सर।

0: तो देखो सा, आप बढ़िया सो गीत सुनियो, खूब सारी बातें की दी, जानकारी दी दी, योजना रे बारे में बात की दी। और अबे आ घड़ी रे आड़ी देखा तो चालवारो टाइम वे गयो है, तो लेवा सा विदा चाला सा,
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा।
2: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी उदयपुर है, दिन के 3 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इससे अधिक लाभ मिलते हैं। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 8वें ओवर में 2 विकेट पर 48 रन बना लिए हैं। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। दिन के 3:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। हमारी संध्याकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम अब हमारे FM लेक्सिटी चैनल के श्रोता भी एक साथ सुन सकेंगे।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित और मेरे साथ हैं मनस्वी।
1: दोस्तों, आज का कार्यक्रम होगा जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर। शुरुआत करेंगे न्यू गैजेट सेगमेंट से, जिसमें जानेंगे वेटरनरी हॉस्पिटल में उपयोग होने वाली आधुनिक तकनीकों के बारे में। फिल्मी दुनिया में चर्चा होगी दिबाकर बैनर्जी और नेल्सन दिलीप कुमार की। सेहतनामा में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, साथ ही क्रिस प्रैट, शिव पंडित, लायनल रोज, सीमा लागू, विकास भट्टाचार्य और विष्णु प्रभाकर के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी भी।
0: बिल्कुल, और इतना ही नहीं, अंत में आज के दिन का इतिहास और स्पोर्ट्स अपडेट से जुड़ी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का युवाणी कार्यक्रम इस शानदार गीत के साथ।

0: दोस्तों, इंसानों की तरह जानवर भी हमारे परिवार का अहम हिस्सा होते हैं। जब वे बीमार पड़ते हैं तो उनकी सही देखभाल और बेहतरीन इलाज हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाता है।
1: लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आज के आधुनिक वेटरनरी हॉस्पिटल्स में ऐसे कौन से गैजेट्स और तकनीकें मौजूद हैं जो बेजुबान पशुओं के इलाज को तेज़, सुरक्षित और अधिक प्रभावी बना रही हैं?
0: बिल्कुल मनस्वी, विज्ञान और तकनीक की प्रगति ने पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव लाया है। अब कई वेटनरी हॉस्पिटल्स में ऐसी आधुनिक मशीनें उपलब्ध है जिनकी मदद से बीमारियों की पहचान पहले से कहीं ज़्यादा सटीक तरीके से की जा सकती है।
1: तो आइए न्यू गैजेट सेगमेंट में जानते हैं उन आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के बारे में जो पशु चिकित्सा सेवाओं को नई दिशा दे रहे हैं और हमारे बेजुबान साथियों के बेहतर स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
0: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल एक्सरे मशीन की। यह तकनीक कुछ ही मिनटों में पशुओं की हड्डियों, जोड़ों और आंतरिक चोटों की स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध कराती है, जिससे बीमारी का पता जल्दी लगाया जा सकता है।
1: इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन का उपयोग गर्भावस्था की जांच, आंतरिक अंगों की स्थिति जानने और विभिन्न रोगों की पहचान के लिए किया जाता है। वहीं एंडोस्कोपी सिस्टम डॉक्टरों को बिना बड़े ऑपरेशन के शरीर के अंदर की स्थिति देखने की सुविधा भी देता है।
0: साथ ही पोर्टेबल ब्लड एनालाइजर भी काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है, जो कि कुछ ही मिनटों में रक्त जांच की रिपोर्ट उपलब्ध करा देता है।
1: सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया मॉनिटर और मल्टी पैरामीटर मॉनिटर जैसे उपकरण पशुओं की हृदय गति, ऑक्सीजन स्तर और अन्य ज़रूरी संकेतों पर लगातार नज़र रखते हैं, जिससे ऑपरेशन अधिक सुरक्षित बन जाता है।
0: इतना ही नहीं, अब सीटी स्कैन, एमआरआई और लेजर सर्जरी जैसी कई उन्नत सुविधाएं भी उपलब्ध है जो जटिल बीमारियों के उपचार में भी मदद करती है।
1: तो दोस्तों, यही है वे आधुनिक उपकरण जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स को तकनीक के नए दौर में ले जा रहे हैं और हमारे बेजुबान साथियों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

0: दोस्तों, अब आज की फिल्म दुनिया सेगमेंट में हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के दो ऐसे फिल्मकारों की जिन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई, और आज यानी 21 जून को इनका जन्मदिन है।
1: बिल्कुल मोहित, एक है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक दिबाकर बैनर्जी और दूसरे हैं नेल्सन दिलीप कुमार। दोनों ही निर्देशकों ने अपनी अपनी फिल्म इंडस्ट्री में कई यादगार फिल्में दी हैं, अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आइए जानते हैं इनके जीवन और करियर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें।
0: बिल्कुल मनस्वी, शुरुआत करते हैं दिबाकर बनर्जी से। उनका जन्म 21 जून 1969 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापन जगत से की और बाद में फिल्म निर्देशक की दुनिया में कदम रखा।
1: वर्ष 2006 में आई उनकी पहली फिल्म खोसला का घोसला ने दर्शकों का दिल जीता। इसके बाद उन्होंने ओए लक्की लक्की ओए, शंघाई और बॉम्बे टॉकीज जैसी चर्चित फिल्मों का भी निर्देशन किया।
0: उनकी फिल्मों की खासियत है कि वे समाज के वास्तविक मुद्दे को नए और प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। उनकी फिल्में मनोरंजन के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है।
1: अवार्ड्स की बात करें तो उनकी फिल्म खोसला का घोसला को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, वहीं ओए लक्की लक्की ओए ने भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किया। उनकी फिल्मों को कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी सराहाया गया है।
0: अब बात करते हैं तमिल सिनेमा के लोकप्रिय निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार की। उनका जन्म 21 जून 1984 को हुआ था। उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई की और अपने करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट राइटर के रूप में की।
1: नेल्सन ने बतौर निर्देशक अपनी पहचान कोला मावू कोकिला से बनाई। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर बीस्ट और जेलर जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया।
0: खासकर जेलर ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया। साथ ही इस फिल्म ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में भी शामिल किया।
1: अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें कोला मावू कोकिला के लिए साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का सम्मान मिला। वहीं जेलर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।
0: तो इसी के साथ फिल्मी दुनिया के इन दोनों प्रतिभाशाली निर्देशकों को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

0: मनस्वी, आजकल लोग फिट रहने के लिए जिम, डाइट और ना जाने कितने तरीके अपनाते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी महंगे उपकरण के भी हमें स्वस्थ रख सकती है। और इसी सोच के साथ आज के सेहतनामा सेगमेंट में भी हम बात करेंगे एक ऐसी ही प्राचीन विधि की।
1: बिल्कुल मोहित, और वो है योग। योग केवल आसनों की कला नहीं, जीवन जीने का ज्ञान है। तन को शक्ति, मन को शांति और आत्मा को देता सम्मान है। आइए योग को आदत नहीं अपनी पहचान बनाएं, स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। और इसी के महत्व को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए हर साल 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। भारत में शुरू हुई यह परंपरा आज विश्व भर में लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दे रही है।
0: बिल्कुल, और योग कोई नया चलन नहीं, यह भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा है जो शरीर को फिट रखने के साथ साथ मन को भी सुकून देती है। शायद यही वजह है कि आज दुनिया के करोड़ों लोग अपनी डेली लाइफ में योग को शामिल कर चुके हैं।
1: और इसी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को 175 देशों का समर्थन मिला और

0: फिर साल 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया।
1: बिल्कुल। और वैसे मनीष, 21 जून की तारीख ही क्यों चुनी गई?
0: क्योंकि मोहित 21 जून साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है और भारतीय परंपरा में इसका विशेष महत्व भी है, इसलिए इस दिन को योग दिवस के लिए चुना गया।
1: बिल्कुल। और आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम बात हो गई है। ऐसे में योग हमें न सिर्फ फिट रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। रोजाना कुछ मिनट का योग हमारी ऊर्जा बढ़ा सकता है, एकाग्रता बेहतर कर सकता है और जीवन को अधिक संतुलित भी बना सकता है।
0: और इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी बढ़ती उम्र में भी स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बने रहने के लिए योग करें।
1: तो आइए इस योग दिवस पर हम भी एक छोटा सा संकल्प लें कि दिन में कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी निकालेंगे और योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएंगे।
0: इसी संदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।
1: और अब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष अवसर पर आपको सुनवाते हैं युवाओं में योग के महत्व, इस विषय पर युवा योग ट्रेनर तोषिता दशोरा से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत।
2: श्रोताओं, आज विश्व योग दिवस और योग दिवस पर हमारे साथ जुड़े हैं युवा योग ट्रेनर तोषिता दशोरा, और इनसे हम जानेंगे कि क्यों ये योग दिवस खास है और खास तौर से अगर युवाओं के संदर्भ में इसकी बात की जाए तो योग दिवस की आज के समय में कितनी भूमिका है। तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: तो तोषिता, क्योंकि जो हमारा विषय है, जितने भी हमारे युवा श्रोता हैं या योग दिवस के संदर्भ में जब हम उनको जानकारी देना चाह रहे हैं कि ये जो योग है एक युवाओं के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और किस तरह से उनको एक हेल्दी लाइफ जीने का एक उनके लिए एक राह बन सकती है।
3: सबसे पहले तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए आजकल करियर रिलेटेड डिसीजन या कोई भी और डिसीजन लेना बहुत टफ हो गया है, क्योंकि करियर पाथ भी बहुत टफ हो गए हैं, इजी सिलेक्शंस भी नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन भी रहता है कि हम किस फील्ड में जाएं, क्या ऑप्शन चूज़ करें। इतने सारे फील्ड्स हैं आजकल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो योग प्राणायाम इसमें हेल्प करेगा, आपको एक डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करेगा। आप एक डिसीजन पे आ पाएंगे कि हमको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये मेंटल स्ट्रेस पे भी काम करेगा। आपका स्ट्रेस भी धीरे धीरे, आप प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और साथ में आसनों का अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे आप खुद परिणाम की तरफ जाएंगे कि हाँ, हमारा स्ट्रेस कम हो गया है और हम बहुत खुश रहने लग गए हैं, खुश फील कर रहे हैं। एक अलग ही एनर्जी पूरे दिन आपको फील होगी और आप जो अपना डेली में जो काम कर रहे हैं उसमें आप डबल एनर्जी लगा पाएंगे।
2: तोषिता, आपने जो शेड्यूल की बात की या जो भी डिसीजन मेकिंग है इस पर आपने युवाओं के सोच के बारे में रखा, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है, आजकल के समय में हमने जनरेशन्स को बांट दिया है। जेंजी हमारे सामने है, अल्फा बीटा, आगे आने वाली जनरेशन्स भी हैं और ये काफ़ी वास्तविकता से दूर एआई के काफ़ी नज़दीक हैं। उनको कुछ भी समाधान चाहिए तो वो एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क पर अपनी प्रेजेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बल्कि खुद अपने आप से या यूँ कहें खुद की आत्मा से जुड़ाव से ज़्यादा वो उस नेटवर्क पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप?
3: योग प्राणायाम एक ऐसी पद्धति है जो आपके शरीर को मन और आत्मा से जोड़ेगा। एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं और आप बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है एक। और आप जो चाहते हैं उस पर आप वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ दिखावे वाली दुनिया में, सोशल मीडिया में ही उलझे रहेंगे तो क्या आप चाहते हैं उस पर आप कभी वर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो युवाओं के यही है कि आप कम से कम आधा घंटा, धीरे धीरे करके इसको 1 घंटे तक ले जा सकते हैं और इससे आप मतलब अपने दिनचर्या बना लीजिए, तो आपको काफ़ी चीज़ों में डिफरेंस अपने आप फील होगा।
2: जब युवाओं की बात हो ही रही तो युवाओं के साथ एक बात ये भी है, उनको लगता है कि योग प्राणायाम और आसन बड़े बुजुर्गों के लिए है। हमारी जो एज है, हमें तो जिम ज्वाइन करना है, फिटनेस ट्रेनर के पास जाकर ही हम हमारे बॉडी या हमारे स्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं। एक फैंसी गेटअप और कूल दिखने के लिए काफ़ी युवा उसी राह पर चल पड़े हैं, लेकिन योग जो है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जिसकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा है, उससे थोड़ा वो दूर है। इस पर आपके क्या विचार हैं?
3: जिम करना भी गलत चीज़ नहीं है, जिम भी एक अच्छी चीज़ है, बट जिम की इम्पॉर्टेंस एक अलग पार्ट पे है और योगा प्राणायाम की इम्पॉर्टेंस एक अलग पार्ट पे है। जिम से आप अपनी बॉडी को डेवलप भी कर लेंगे, मसल बिल्ड भी कर लेंगे, आपके स्ट्रेंथ को भी डेवलप कर लेंगे और आपकी जो अट्रैक्टिव बॉडी है वो भी बन जाएगी। पर अगर हम बात करें इंटरनल बॉडी की, तो इंटरनल बॉडी के लिए आपको योग प्राणायाम की तरफ ही जाना पड़ेगा। आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे वर्क करेगा, आपकी मेंटल पीस पे वर्क करेगा, आपके मन को शांत

0: करेगा, आपके थॉट्स को जो बहुत कंफ्यूजिंग थॉट्स चलते रहते हैं उनको क्लैरिफाई करेगा। तो योग प्राणायाम की तरफ भी हमको थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालना चाहिए।
1: अगर बात की जाए आजकल का युवा काफ़ी मेंटल स्ट्रगल पे भी चल रहा है, उनको काफ़ी मेंटल स्ट्रेस है, वो डिसीजन लेने में उतने अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं, कई बार कन्फ्यूजन की वजह से एक दिमाग पर एक तनाव लेके चलते हैं। साथ ही साथ क्योंकि वर्क कल्चर अलग अलग है, किसी के ऑफिस का लेवल या काम का लेवल स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो सकता है, कोई ज़्यादा रिलैक्स है, तो ऐसी कंडीशन में मानसिक शांति के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है?
0: बिल्कुल, योग इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करें धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग आप 15 मिनट से कर सकते हैं, वो 15 मिनट की डेली प्रैक्टिस भी एक अलग ही इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा उससे। फिर धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हो। इसमें प्राणायाम ऐड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, श्वास को हम कैसे ले रहे हैं कैसे छोड़ रहे हैं उस पर फोकस कर लिया। थोड़ी थोड़ी मतलब छोटी छोटी प्रैक्टिस भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: अगर बात की जाए, जब हम योग की बात कर रहे हैं या योगासन योग क्रियाओं की बात करते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है कि सुबह का समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और कई पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में योग सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है करने का। लेकिन आजकल ब्रह्म मुहूर्त में तो युवा सो रहा है, ठीक है, इस कारण से सोशल मीडिया पे उसका होना या फिर वर्क फ्रॉम होम जैसी कंडीशन होना या फिर लेट नाइट स्टडी करना, ये कंडीशंस उनके सामने हैं, तो वो कहते हैं कि हमें योग के लिए समय नहीं मिल पाता। लेकिन अगर दिनचर्या को अगर संतुलित करना है और उसमें अगर योग का समावेश हो, तो एक युवा की ज़िंदगी कितनी बदल सकती है उसके बारे में बताएं।
0: जो भी लोग ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है, बाकी सारे कामों के लिए समय होता है लेकिन खुद के लिए हम एक 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो 24 आवर्स में से 30 मिनट्स निकालना बहुत इजी है, 30 मिनट्स तो कोई भी निकाल सकता है। तो सिर्फ 30 मिनट्स की प्रैक्टिस ही लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर सकती है, तो उसके लिए एक बार बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो इस योगा डे से ही हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसको नियमित अभ्यास बनाइए धीरे धीरे करके।
1: जाते जाते कार्यक्रम में जितने भी हमारे युवा श्रोता हैं, उनको आप विश्व योग दिवस पर क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे वो अपना आगामी जीवन सुखमय और स्वस्थ लाभ के साथ जी सकें?
0: कभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि हम कल से स्टार्ट कर लेंगे, फिर कल आएगा, फिर अगले दिन पे टाल देंगे। मतलब आज ही स्टार्ट करना है। अगर आज ही स्टार्ट करेंगे तभी हम धीरे धीरे उस पर काम कर पाएंगे, और थोड़ा टाइम भी लगेगा, एक दिन में तो इफेक्ट नहीं दिखेंगे, नियमित अभ्यास से ही इफेक्ट दिखेंगे। तो इस योग दिवस से ही आप लोग स्टार्ट कीजिए, इस योग दिवस से ही आप एक प्रण लीजिए कि हाँ 15 से 20 मिनट या 30 मिनट हम खुद के लिए निकालेंगे, तो उससे आपके पूरे दिन में जो आपको प्रोडक्टिविटी और एनर्जी जो दिखाई देगी वो बिल्कुल अलग ही होगी।
1: तो आप थे युवा योग ट्रेनर तोषिता दशोरा, और आज विश्व योग दिवस पर युवाओं के साथ योग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: दोस्तों हर दिन अपने साथ कुछ खास यादें लेकर आता है, कुछ खास नाम लेकर आता है। 21 जून भी एक ऐसा ही दिन है क्योंकि आज मनोरंजन, सिनेमा और खेल जगत की तीन जानी मानी हस्तियों का जन्मदिन है।
1: जी हाँ, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के सुपरस्टार क्रिस प्रैट, भारतीय अभिनेता शिव पंडित और ऑस्ट्रेलिया के महान मुक्केबाज लायनेल रोज की, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में शानदार पहचान बनाई है।
0: बिल्कुल, और सबसे पहले बात करते हैं क्रिस प्रैट की। 21 जून 1979 को अमेरिका के मिनोसोटा में जन्मे क्रिस आज हॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में गिने जाते हैं।
1: क्रिस प्रैट ने अपने करियर की शुरुआत छोटे छोटे रोल से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान टीवी सीरीज़ पार्क्स एंड रिक्रिएशन से मिली। इसके बाद उन्होंने गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी में स्टार लॉर्ड और जुरासिक वर्ल्ड में ओपन ग्रैडी का किरदार निभाकर दुनिया भर में

0: लोकप्रियता हासिल की।
1: बिल्कुल, और साल 2015 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया। वहीं 2017 में उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से भी सम्मानित किया गया।
0: उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में 14 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमाई की है। द लीगो मूवी, द टुमारो वॉर, द सुपर मैरियो ब्रोज़ और द ग्रेफिल्ड मूवी जैसी फिल्मों में भी उन्हें अहम भूमिका निभाई है।
1: बिल्कुल, और अब बात करते हैं भारतीय अभिनेता शिव पंडित की। 21 जून 1984 को जन्मे शिव पंडित अभिनेता होने के साथ साथ मॉडल, रेडियो जॉकी, एंकर और टेलीविजन होस्ट भी हैं।
0: शिव पंडित ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टीवी से की थी। लोकप्रिय कॉमेडी शो FIR में निभाए गए उनके किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। बाद में उन्होंने IPL के पहले सीजन में एक्स्ट्रा इनिंग्स T20 शो की मेज़बानी भी की थी।
1: बिल्कुल, और फिल्मों की बात करें तो उन्होंने शैतान से बॉलीवुड में पहचान बनाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता की श्रेणी में नामांकन भी मिला। इसके अलावा बॉस, मुंबई दिल्ली मुंबई और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों में भी वे नजर आ चुके हैं।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पढ़ाई करने वाले शिव पंडित आज वेब सीरीज और फिल्मों दोनों में ही अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के महान मुक्केबाज नाइलेन रोज की। 21 जून 1948 को जन्मे रोज ऑस्ट्रेलिया के पहले आदिवासी खिलाड़ी थे जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी खिताब अपने नाम किया।
0: साल 1968 में उन्होंने जापान के फाइटिंग हराडा को हराकर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप बनने का गौरव हासिल किया। वे पहले आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई भी बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला। अपने पेशेवर करियर में उन्होंने 53 मुकाबले लड़े जिसमें से 42 जीत हासिल की।
1: बिल्कुल, और खेलों के अलावा उन्होंने गायन में भी अपना हाथ आजमाया और उनका गीत आई थैंक यू काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ।
0: साल 2003 में उन्हें ऑस्ट्रेलियन नेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और साल 2010 में उन्हें लेजेंड का दर्जा दिया गया।
1: तो इसी के साथ क्रिस प्रेंट, शिव पंडित और लाइन एंड रोज, इन तीनों को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, बात करेंगे तीन ऐसी महान हस्तियों की जिन्होंने अभिनय, कला और साहित्य के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी।
4: बिल्कुल मोहित, आज जन्मदिन है प्रसिद्ध अभिनेत्री रीमा लागू, प्रख्यात चित्रकार विकास भट्टाचार्य और वरिष्ठ साहित्यकार विष्णु प्रभाकर का। तो आइए जानते हैं इनके जीवन, उपलब्धियों और अमूल्य योगदान के बारे में।
3: बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हिंदी और मराठा सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेत्री रीमा लागू से। उनका जन्म 21 जून 1958 को हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की और बाद में रंगमंच, टेलीविजन व फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई।
4: साल 1979 की मराठी फिल्म सिंहासन से शुरू हुआ उनका सफर। कयामत से कयामत तक, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है और कल हो न हो जैसी फिल्मों तक पहुंचा। 90 के दशक में उन्होंने माँ के किरदार को नई पहचान दी और टीवी धारावाहिक श्रीमान श्रीमती और तू तू मैं में भी उनके अभिनय को खूब सराहाया गया।
3: बिल्कुल, और उन्हें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, वी शांताराम पुरस्कार और तूतू मेमे के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री पुरस्कार मिला। 2017 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी अभिनय विरासत आज भी जीवित है।
4: रंगों को उन्होंने यूं आवाज़ दी कि कैनवास भी बोल उठा, हर रेखा में जीवन का कोई अनकहा सच गोल उठा। विकास भट्टाचार्य की तुलिका ने सपनों को आकार दिया और साधारण चेहरों में भी असाधारण संसार दिया। जी हाँ दोस्तों, हम अब बात कर रहे हैं विकास भट्टाचार्य की, जिनका जन्म आज ही के दिन 21 जून को 1940 को कोलकाता में हुआ और उनकी पेंटिंग्स में बंगाली मध्यम वर्गीय जीवन और सामाजिक और मानवीय भावनाएँ बेहद प्रभावशाली ढंग से दिखाई देती हैं। उनकी डॉल सीरीज और दुर्गा सीरीज ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है।
3: बिल्कुल, और उनकी कला प्रदर्शनियां पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क सहित कई देशों में आयोजित हुई है। कला जगत में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, बंगा रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार और ललित कला अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 2006 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कलाकृतियाँ आज भी प्रेरणा देती है।
4: अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के महान व्यक्ति विष्णु प्रभाकर की। उनका जन्म 21 जून 1912 को हुआ था। उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, जीवनी और बाल साहित्य सहित अनेक विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं।
3: बिल्कुल, और उनका चर्चित उपन्यास है अर्धनारीश्वर, जो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है।

0: जबकि आवारा मसीहा उनकी सबसे प्रसिद्ध जीवनी मानी जाती है।
1: स्वतंत्रता के बाद उन्होंने आकाशवाणी नई दिल्ली में नाटक निदेशक के रूप में भी कार्य किया। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, महापंडित राहुल संस्कृतायन पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
0: और 11 अप्रैल 2009 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को प्रेरित करती है और हिंदी साहित्य को भी समृद्ध बना रही है।
1: तो इसी के साथ इन तीनों महान हस्तियों की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और उनके योगदान को शत शत नमन।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: किसे?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दोस्तों अब समय है कार्यक्रम के खास हिस्से, आज के दिन का इतिहास का, यानी 21 जून के दिन इतिहास में क्या क्या खास घटनाएं हुई, आइए जानते हैं।
8: सबसे पहले बात करते हैं साल 1834 की। तो आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक साइरस मैकॉर्मिक को अपनी प्रसिद्ध रीपर मशीन यानी कि फसल काटने वाली मशीन का पेटेंट मिला, जिसने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी।
7: बात करें साल 1883 की, तो आज ही के दिन दुनिया का पहला फेरिस व्हील शिकागो में जनता के लिए शुरू किया गया, जो बाद में मेलों और मनोरंजन का प्रमुख आकर्षण बना।
8: बात करें साल 2004 की, तो आज ही के दिन स्पेसशिप वन ने दुनिया की पहली निजी मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की और अंतरिक्ष पर्यटन के नए युग की शुरुआत की।
7: बात करें साल 1997 की, तो आज ही के दिन महिला बास्केटबॉल की प्रतिष्ठित लीग WNBA का पहला मैच खेला गया, जो महिला खेलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।
8: वहीं 2009 में आज ही के दिन ग्रीनलैंड को व्यापक स्वशासन सेल्फ रूल प्राप्त हुआ, जो उसके राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। और दोस्तों 21 जून को पूरी दुनिया में विश्व संगीत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
7: तो दोस्तों ये थी 21 जून से जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक घटनाएं।
8: और दोस्तों अब बात करें आज के स्पोर्ट्स अपडेट की, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 14 जुलाई को शुरू होने वाले इंग्लैंड दौर के लिए 15 सदस्यीय भारतीय वनडे टीम की घोषणा की है। टीम में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी टीम में शामिल हो सकते हैं। इंडिया का फाइनल मुकाबला रणगिरी दम्बूला इंटरनेशनल स्टेडियम में तलिका वर्मा की कप्तानी टीम में और श्रीलंका के बीच खिताबी भिड़ंत जारी है। अब बात करें फुटबॉल समाचार की, तो टूर्नामेंट के 10वें दिन हुए ग्रुप स्टेज का मुकाबला में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से शिकस्त दी और जापान में ट्यूनिशियन को 4-0 से हराया।
7: तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, इस सॉन्ग के साथ आज लेंगे आपसे विदा। आज मैं था आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित और मेरे साथ थी
8: मनस्वी।

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी या आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे, समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को लेकर वार्ता आज स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में शुरू हो गई है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल

0: के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। आज ऑकलैंड में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। अगला गाना आज विशेष है फादर्स डे, तो ये गाना उन्हीं के लिए बजाते हैं आपके अपने रेडियो सेट पर।
1: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। संदेश से पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था वह था फिल्म हम किसी से कम नहीं। आवाज़ थी आशा भोसले और किशोर कुमार की, संगीत था RD बर्मन का।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त करते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के कार्यक्रम मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6:28 होने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। उसके बाद हम रिले करेंगे ज़िले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के तुरंत बाद शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे ICC वीमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की कमेंट्री का प्रसारण। हमारे AIR ऐप पर इस समय फिल्म संगीत का प्रसारण जारी रहेगा। समाचारों के लिए कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: चैनल्स और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, आपका DD फ्री डिश।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब के सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना DD उर्दू चैनल।
6: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
7: इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारी ना।
7: और ये मेरी गुड़िया थी ना।
8: पर दादी, आपके नाम?
9: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
7: क्या
9: RBI कहता है?
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस और लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। खातीपुरा मेगा कोच टर्मिनल के लोकार्पण सहित कई रेल सुविधाओं की सौगात दी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश

0: विदेश में योगाभ्यास के कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए और नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोच टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने 41 छोटे और मध्यम स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार और 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम से पहले मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि जयपुर शहर की आवश्यकताओं को देखते हुए मेगा कोच टर्मिनल का निर्माण किया गया है। यहां एक महीने में करीब 450 रेलगाड़ियां मेंटेन हो सकेंगी, जिनमें आधुनिक गाड़ियां भी शामिल है।
1: जयपुर शहर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए खातीपुरा में मेगा टर्मिनल बनाया गया है, जिससे कि महीने की एक सब्सटेंशियल नंबर करीब करीब 450 गाड़ियां यहां पे मेंटेन हो सके, वैसी व्यवस्था की गई है और बहुत ही मॉडर्न व्यवस्था की गई है, जिससे कि आज की जो आधुनिक गाड़ियां हैं वंदे भारत, अमृत भारत, इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहां पर हो सके, LHB के कोचेस, इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहां पर हो सके।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान के निवासियों को आज मिली रेल यात्री सुविधाओं से काफी फायदा होगा।
2: मेगा कोचिंग टर्मिनल खातीपुरा तथा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा का शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि उनको ट्रेन बदलती थी, काफी परेशानी होती थी और मैं कह सकता हूँ पूरे राजस्थान को जोड़ने का काम इस ट्रेन के माध्यम से होगा।
0: रेल मंत्री श्री वैष्णव ने आज बीकानेर से जयपुर निरीक्षण के दौरान सीकर स्टेशन पर पूर्व सांसद सुमिधा नंद सरस्वती के साथ चर्चा की। उन्होंने सुंदरपुरा स्टेशन के निर्माण कार्य की मंजूरी और जल्द कार्य शुरू होने के बारे में जानकारी दी। इस स्टेशन के निर्माण से खाटूश्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनका आवागमन आसान हो जाएगा। इससे पहले बीकानेर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री ने बीकानेर से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरहदी क्षेत्रों में रेल नेटवर्क पहुंचने से न केवल क्षेत्र के लोगों को रेल सेवाएं मिलेंगी, बल्कि ये परियोजना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज लद्दाख के लेह में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ, सुखी और शांतिपूर्ण समाज के लिए योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास का नेतृत्व करते हुए कहा कि योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर के एसएमएस के इंडोर स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयुष मंत्रालय की ओर से जयपुर के जंतर मंतर पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इसमें 18 देशों के विद्यार्थी शामिल हुए। सिरोही के आबूराज में आयोजित हुए सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग न सिर्फ शरीर और मन को जोड़ता है बल्कि विश्व को जोड़ने का भी काम करता है। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योग शिविर में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। वहीं राजसमंद झील की नौ चौकी पाल पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी और आम लोगों ने उत्साहपूर्वक योग किया। सवाईमाधोपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से योगाभ्यास, योग संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पाली में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम लाखोटिया उद्यान में आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि योग हमारे मन, शरीर और आत्मा की एकता से जुड़ा है। ये हर उम्र में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित है ताकि लोग लंबे समय तक सक्रिय और स्वस्थ रह सके। आज जयपुर के बिड़ला सभागार में आरोग्य महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग एक दिवस नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब स्वास्थ्य के लिए एक आंदोलन बन चुका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आबूराज के पर्यटन, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय विशेषताओं के अनुसार सर्वांगीण विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विकास कार्यों को समन्वय के साथ समय पर पूरा करने और संभागीय आयुक्त तथा मुख्य सचिव को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा आज सिरोही जिले के आबूराज में आबू पर्वत विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आबूराज में शहरी विकास, सड़क, पार्किंग, आवागमन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाए ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों का आगमन हो। उन्होंने कहा कि विवेकानंद पार्क और गुरु शिखर का सौंदर्यकरण, अबूर्दा माता मंदिर और दत्तात्रेय मंदिर के विकास कार्यों, ईवी व्हीकल को बढ़ावा देने और भारत माता नमन स्थल को नमो उद्यान के रूप में विकसित करने सहित विभिन्न विकास कार्यों से आबूराज इको फ्रेंडली बन सकेगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश की 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस बार विद्यार्थियों को नए प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र से ही प्रवेश दिया गया। इधर प्रदेश में री नीट पुनर्परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जयपुर के 103 परीक्षा केंद्रों पर 37,108 परीक्षार्थी शामिल हुए। इस बार अभ्यर्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। इससे परीक्षा अवधि 180 मिनट से बढ़कर 195 मिनट हो गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहे। इससे पहले परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे

का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए की प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि इससे संबंधित पत्र पूरी तरह फर्जी है। इकाई ने बताया कि मुद्रा एक पुनर्वित्त एजेंसी है और ये व्यक्तियों या सूक्ष्म उद्यमियों को सीधे ऋण नहीं देती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की एक

0: कंपनियों को सीधे ऋण नहीं देती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस और लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। खातीपुरा मेगा कोच टर्मिनल के लोकार्पण सहित कई रेल सुविधाओं की सौगात दी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश विदेश में योगाभ्यास के कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। और नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा, देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जसवंत सिंह डूडी ने तैयार किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साह के साथ सामूहिक योगाभ्यास करते हुए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस दौरान योग भी वोट भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच योगाभ्यास के बाद लोगों को मतदाता पंजीकरण और अनिवार्य मतदान के लिए प्रेरित करने को लेकर शपथ भी दिलाई गई। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों ने रेतीले धोरों पर योगाभ्यास करते हुए आमजन को स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए सीधे किसानों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र दाता में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर किसानों ने प्रधानमंत्री की ओर से जारी की गई सम्मान निधि की राशि का स्वागत करते हुए इसे खेती बाड़ी के लिए उपयोगी और मददगार बताया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरा होने के अवसर पर बाड़मेर जिले में सरहदी गांवों और दूर दराज की ढाणियों की महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं ने इन शिविरों में हिस्सा लेकर विशेषज्ञ परामर्श और स्वास्थ्य जांच सेवाओं का लाभ उठाया। इस दौरान महिलाओं को संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित जांच, संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु की देखभाल और परिवार कल्याण संबंधी उपयोगी जानकारियां दी गईं। राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इन दिनों जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए गए हैं। आगामी 15 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों का समय सवेरे 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। शिविर में आमजन की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ महिलाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से बाड़मेर में पिछले दिनों नारी चौपाल का आयोजन किया गया। भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित नारी चौपाल में महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। पिछले दिनों जिले के जसदेर तालाब से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तालाब की पूजा अर्चना की गई, साथ ही जल और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। पशुपालन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, ग्राम पंचायत रानीवास और लूणू खुर्द में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। अभियान के तहत ग्राम पंचायत मंगले की बेरी में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 साल पूरा होने के अवसर पर बीते दिनों बाड़मेर में आकाशवाणी परिसर

0: में लोक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। इस दौरान मोरचंग, भपंग, खड़ताल की जुगलबंदी और भवाई नृत्य ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाड़मेर जिले में शिव इलाके में झापली कला गांव के रहने वाले ख्याति प्राप्त लोक कलाकार समंदर खां मांगणियार को पिछले दिनों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उन्हें लोक संगीत की परंपरागत मांड गायन शैली को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के पहले वाटर रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का अवलोकन कर प्रगति की समीक्षा की। इसी के साथ बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेशे सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस और लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस रेल ने हरी झंडी दिखाई। खातीपुरा मेगा कोच टर्मिनल समेत कई रेल सुविधाओं की सौगात दी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे देश विदेश में योगाभ्यास रा कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो योग मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य रा मार्ग ने दिखावे है। प्रधानमंत्री कोलकाता में देश में बनिया नौसेना रा तीन पोत देश ने सौंपया। और नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा देश रा 5032 केंद्र और विदेश रा 14 केंद्र माथे करड़ी हिफाजत रे बीच है पूरी हुई। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर रा खातीपुरा रेलवे स्टेशन जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ने रवाना करया। साथ ही वणा खातीपुरा में मेगा कोच टर्मिनल रो उद्घाटन करियो। ई मौके रेल मंत्री 41 छोटा और मझला स्टेशन माथे नुआ प्लेटफार्म पसारा और 16 स्टेशन माथे एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली रो लोकार्पण करियो। कार्यक्रमों पहला मीडियाओं बतल में श्री वैष्णव कहो कि जयपुर शहरी जरूरतों ने देखता मेगा कोच टर्मिनल बनाई जो है। अठे एक महीना में कोई 450 रेलगाड़ियों रो रख रखाव वह सकेला जिन में आधुनिक गाड़ियां ही भेड़ी है।
2: जयपुर शहर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए खातीपुरा में मेगा टर्मिनल बनाया गया है जिससे कि महीने की एक सब्सटेंशियल नंबर करीब करीब 450 गाड़ियां यहाँ पे मेंटेन हो सके वैसी व्यवस्था की गई है और बहुत ही मॉडर्न व्यवस्था की गई है जिससे कि आज की जो आधुनिक गाड़ियां हैं वंदे भारत अमृत भारत इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहाँ पर हो सके। LHB के कोचेस इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहाँ पर हो सके।
1: ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रिया। मुख्यमंत्री आपरा भाषण में कहो कि राजस्थान रा रहवासियों ने आज मिली रेल यात्री सुविधाओं घणो फायदो वेला।
3: मेगा कोचिंग टर्मिनल खातीपुरा तथा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा का शुभारंभ हो रहा है क्योंकि आप देखते हैं कि उनको ट्रेन बदलती थी काफी परेशानी होती थी और मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे राजस्थान को जोड़ने का काम इस ट्रेन के माध्यम से होगा।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बीकानेरू जयपुर निरीक्षण रे दौरान सीकर ठेसन माथे सुंदरपुरा ठेसन बनाई चुनाई काम री मंजूरी दी और बेगाव बेगा काम शुरू करन री जानकारी दी। वणा कहो कि इन ठेसन रे बनानू खाटू श्याम जी आवण वाला श्रद्धालुआ ने घणो आराम मिलेला और वारो आवणो जावणो ही सरल वे जायला। इनु पहला बीकानेर ठेसन माथे विया कार्यक्रम में रेल मंत्री बीकानेरू लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस रेल ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। आ रेल गुजरात राजस्थान रा सैलानी ठोड़ा रे बीच सीधी रेल जुड़ाव मुहैया करावेला। ई मौके रेल मंत्री कहो कि सरहदी हलका में रेल नेटवर्क पुगणू नी फगत हलका ने रेल सेवावां मिलेला बल्कि आ परियोजना सामरिक निजरू ही महत्व वेला। श्री वैष्णव बतायो कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपयों 32 रेल परियोजनावां माथे काम चाले। ई दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाली मौजूद रिया। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनायो जावे। इस साल रो मुद्दो है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश

0: दूसरा जबलपुरमां योगाभ्यासमां भेळी वी। ई मौके राष्ट्रपति कह्यो कि योग भारत री महान परंपरा री निशानी है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन रो मार्ग दिखावे है। वणा लोगों योग ने आपरा रोजरा कामां ने रो हिस्सो बनावण री अरज करी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन लद्दाख रा लेह माए विया जलसा माए हिस्सो लियो। ई मौके वणा लोगों स्वस्थ सुखी और शांतिपूर्ण समाज सारू योग ने आपरा जीवन रो अभिन्न अंग बनावण री अरज करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा खास कार्यक्रम पश्चिम बंगाल री राजधानी कोलकाता माए रेड रोड माथे वियो, जठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास री अगुवाई करता कह्यो के सगला रे जीवन माए योग एक नवी ऊर्जा रो संचार करे है। ई दौरान प्रधानमंत्री कह्यो के योग मानसिक स्वास्थ्य उ शारीरिक स्वास्थ्य रा मार्ग ने दिखावे है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद परिसर में भेड़ा योगाभ्यास में हिस्सो लियो, वठे प्रदेश में सगला जिला ब्लॉक और ग्राम पंचायत शैक्षणिक संस्थान और आयुष्मान आरोग्य मिंद्रा में योग कार्यक्रम विया। जयपुरा एसएमएस रा इंडोर स्टेडियम में विया कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाव बागड़े और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा समेत कई मान्यता लोग मौजूद रिया। सिरोईरा आबूराज माई विया भेड़ा योगाभ्यास में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा योग करियो। ई मौके मुख्यमंत्री कहो कि योग नी फगत शरीर और मन ने जोड़े है बल्कि दुनिया ने जोड़न रो काम करे है। बीकानेर रा करणी सिंह स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव योग शिविर में योगाभ्यास करियो। ई दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाली मौजूद रिया। आयुष मंत्रालय कानियो जयपुरा जंतर मंत्र माथे भेड़ो योगाभ्यास करियो, इनमाय 18 देशों रा पडेसर भेड़ा विया। बीकानेर रा आदर्श स्टेडियम में जिला थरो कार्यक्रम यो, वठे राजसमंद झील री नौ चौकी पाल माथे विया योगाभ्यास कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी और लोगा उमावरे साथ हिस्सो लियो। सवाई माधोपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो कानियो योगाभ्यास योग संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रो आयोजन करीजियो। पाली में जिला थरो भेड़ो योग कार्यक्रम नाकोटिया उद्यान में वियो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो है कि योग आपारा मन शरीर और आत्मारी एकताओं जुड़ियो है और वो हर उम्र में शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य ने चोखो बनावण माथे केंद्रित है जीणु लोग लंबा भगतता सक्रिय और स्वस्थ रह सके। जयपुर रा बिड़ला सभागार में आरोग्य महोत्सव में बोलता वणा कहो कि योग एक दिन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब स्वास्थ्य सारू एक आंदोलन बन चुको है। वणा योग ने जीवन री आदत बनावण री अरज करी। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता देश में बनिया भारतीय नौसेना रा तीन पोत आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रह ने देश ने सौंपया। ई मौके वे कहो कि भारत जहाज बनावण रा हल्का में नुए सोच रे साथ आगे बढ़ रियो है। प्रधानमंत्री कहो कि केंद्र सरकार अजय रासाला में कई नीतिगत सुधार करिया है और घरू बनावण रा बूता ने बधावण सारू खास कदम उठाई जिया है।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: नौसेना मुजब आ पोता में 75% बत्ती देशी चीजा ने काम में ले लीजी है। प्रधानमंत्री कहो के जहाज बनावण और मरम्मत ने राष्ट्रीय मिशन रा रूप में विकसित करियो जावे। वणा कहो के समुद्री हल्का में आवण वाला भगत में लाखों रोजगार बनाया जा सके है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सिरोईरा आबूराज ने सैलानी आध्यात्मिक और पर्यावरण री खासियत मुजब संपूर्ण विकास रो ब्लू प्रिंट तैयार करण सारू हुकम दिया है। वणा विकास कामा ने तालमेल रे साथ भगत सर पूरा करण और संभागीय आयुक्त और मुख्य सचिव ने बरोबर मॉनिटरिंग करण रा निर्देश दिया। श्री शर्मा आज आबू पर्वत विकास समिति री मीटिंग री सदारत करता कहो कि आबूराज में शहरी विकास सड़क पार्किंग आवण जावण सारू विश्व स्तरीय सुविधा विकसित करी जावे जीणु बत्तियों बत्ती सैलानी आ सके। वणा कहो के विवेकानंद पार्क और गुरु शिखर रा सौंदर्यकरण, अर्बुदा माता मिंदर और दत्तात्रेय मिंदर रा विकास कामा, ईवी वाहन ने बढ़ावो देवण और भारत माता नम

मन स्थल ने नमो उद्यान रा रूप माए विकसित करण समेत न्यारा न्यारा कामाऊ आबू राज इको फ्रेंडली बन सकेला। मुख्यमंत्री आज गुजरात रा मां अंबाजी शक्तिपीठ माए दर्शन करने प्रदेश री खुशहाली कामना करी। ई मौके खबर नविसाऊ बतलमाए बना कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री कोशिशा रे कारण ही आज विदेश माए योग दिवस पूरा उमावरे साथे मनाई जो। राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा नीट यूजी री पुनर्परीक्षा आज करड़ी हिफाजत रे भी छे। देश रा 5032 केंद्र और विदेश रा 14 केंद्र माते भी 22,79,032 पड़ेसर परीक्षा माए भेड़ा विया। ई बार पड़ेसरा ने नुआ प्रवेश पत्र और मान्यता वाला फोटो पहचान पत्र ही प्रवेश दे लीजियो। एनटीए मुजब नीट यूजी पुनर्परीक्षा देश रा 551 शहर और 14 विदेशी शहर माए भी अठीने प्रदेश माए नीट पुनर्परीक्षा सारू 25 जिला माए 577 परीक्षा केंद्र बनाई गया। जयपुर रा 103 परीक्षा केंद्र माथे कुल 37,108 पड़ेसर भेड़ा विया। रबे मौसम प्रदेश रा न्यारा न्यारा हल्का माए आथोनी विक्षोभ रा असर हूँ तेज हवा रे साथे बिरखावी। जयपुर माए आज सवारा हल्की बिरखावी वठे श्री गंगानगर जिला माए तेज बिरखा रे साथे कुछ थोड़ा ओला ही पड़िया। कोटा माए दोपहर पछे तेज अंधड़ रे साथे में बरसियो। मौसम महकमो आथोनी विक्षोभ रा असर हूँ आपता 24 घंटा माए बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर और कोटा संभाग माए कुछ थोड़ा रे साथ ही शेखावाटी हल्का माए मेघ गर्जन और आंधी रे साथ मझलाऊँ तेज बिरखा होने री आस जताई है। आवती 22-25 जून ताई आंधी बारिश श्री गतिविधियां चालता रेवन री आस जताई है। आज विश्व ऊंट दिवस है। ई मौके केंद्रीय संस्कृति और सैलानी महकमा रा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देशवासियों ने शुभकामनावां दी है। सोशल मीडिया माथे आपरा संदेश माए श्री शेखावत कयो के ऊंट फगत आजीविका रो साधन नहीं है बल्कि राजस्थान और गुजरात री संस्कृति और रीत री निशानी है। वरना ऊंट ने मरुस्थल रो जहाज बतावता इनने बचावण री अर्जी करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवती 28 जून ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम ...1178-00 माथे भेज सके है। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम री मार्फती विचार भेजा जा सके है। ऐ सुझाव 26 जून ताई भेजा जा सके है। मैं अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिरों सुन ले रहो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस और लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस रेल ने हरी झंडी दिखाई। खातीपुरा मेगा कोच टर्मिनल समेत कई रेल सुविधाओं की सौगात दी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे देश विदेश में योगाभ्यास रा कार्यक्रम भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो योग मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य रा मार्ग ने दिखावे है। प्रधानमंत्री कोलकाता में देश में बनया नौसेना रा 3 पोत देश ने सौंपया। और नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा देश रा 5032 केंद्र और विदेश रा 14 केंद्र माथे करड़ी हिफाजत रे बीच है पूरी भी। इनरे साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माई प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

लेफ्ट राइट परेड थम। जवान पीछे से गाना गाएगा।

ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने में कुछ ही समय बाकी है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार रिले होंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री

अब्बास आरागाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मूज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।